सुप्रभात। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

निरुवी पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं, जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।

आपके साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। से भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटनास्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों

0: प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

दिनकर से जब छिड़ी लड़ाई, अंधकार ही हारा। तो श्रोताओ, दिनकर यानी कि सूर्य, प्रकाश, सत्य, ज्ञान और अच्छे संस्कारों की शक्ति के सामने अंधकार, अज्ञान और बुराई टिक नहीं सकती। कह सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम अच्छे विचारों, सकारात्मक कर्मों का साथ नहीं छोड़ते हैं तो अंततः जीत हमारी ही होती है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की शुरुआत में अभी आपने सुना ये मातृ वंदना। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में ये भजन।

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंडित डीबी पलुस्कर की आवाज में अभी आप ये सुन रहे थे पारंपरिक भजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से।

जय रघुनंदन, जय सियाराम। अशोक खोसला की आवाज में ये श्री राम जी का भजन आप सुन रहे थे। और श्रोताओ, यही था भक्ति संगीत के कार्यक्रम का आखिरी भजन। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए आपको जानकारी दे दें आज दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें हमारे किसान श्रोता लाभ लेंगे बकरी पालन से लाभ के बारे में। 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस कान का संगीतमय पाठ। आज का चिंतन होगा 6:50 पर। सुबह 7:20 पर सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ, जिसमें कवि होंगे अमर सिंह। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 7:30 पर। सुगम गायन में आज कलाकार होंगे अटल शुक्ला, आपसे सुनेंगे कुछ भजन। लोकरंग में आज कलाकार होंगे बसंती विश्वकर्मा। समय वही सुबह 9:00। 9:30 पर सुनेगा एक ही गीतकार के अंतर्गत स्वानंद किरकिरे के रचित कुछ फिल्मी गीत। जिले की छुट्टी होगी सुबह 10:00, जिसे हम अपने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर सुनेगा पत्रिका कार्यक्रम, जिसमें आज खास होगा वार्ता मौसम परिवर्तन का खेती पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे नवीन प्रजापति। 10:35 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा, आपकी पसंद। हमारी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे 11:00 भोपाल केंद्र से फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में ये कार्यक्रम होगा। यहीं से आप सुनेंगे 12:00 आपकी फरमाइश। भोपाल केंद्र से ही लेकर आएंगे 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 सुनेगा महिला कार्यक्रम, जिसमें आज खास होगा वार्ता महिलाओं के प्रति बदलती सोच। वार्ताकार होंगी नैन्सी विश्वकर्मा। साथ ही आपको बताएंगे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में। आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति में सुनेगा लोक संगीत दिन में 1:30 पर। सुगम संगीत यहीं से होगा दिन में 1:45 पर। और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का दिन में 2:00। हमारे युवा श्रोता सुनेंगे शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम में काव्य पाठ स्वप्निल तिवारी से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 5:40 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आपको सुनवाएंगे 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। स्टूडियो से होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज कलाकार होंगे कृष्ण गोपाल मिश्रा। हमारे ग्रामीण श्रोता सुने घरनी कार्यक्रम में 7:20 पर। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी वार्ता ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार की स्थापना। वार्ताकार होंगी डॉ हेमराज द्विवेदी। आज की सीख, इसका विषय होगा जोन पातर में खात ओई में छेद करत। तो श्रोताओं, ये तो थे आज दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: किसान भैया या पंच भैया पशुपालन पे बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं और पशुपालन करके उन्हें अपने जीवन यापन का आगे बढ़ाओ है। खेती किसानी के संगे संगे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश को क्षेत्र है, इतने पे खेती किसानी के संगे पशुपालन अपने पंच भैया मुख्य रूप से करते हैं, जिनमें गाय पालन है, भैंस पालन है और बकरी पालन है। आज हम अपने का बता रहे हैं कि बकरी पालन अपने जो पंच भैया करबो चाहते हैं भी कैसे का करें। कैसे कि देखो अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो बहुत गरीब हैं, छोटे किसान हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं, तो हम उन्हें जो बता दें कि जिन्हें अगर कम लागत लगा के या थोड़ी खेती उनके पास है तो भी बकरी पालन को धंधा जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। कैसे ई काम में कम पैसा लग के अधिक मुनाफा कमाओ जा सकते है। बकरी पालन में बहुत ज्यादा खर्चा अपने पंच भैया का नहीं लगते और जल्दी इसे आय होने लगते। बकरी पालन में अपने पंच भैया एक बात को ध्यान रखें कि जब उन्हें बकरी पालन करने हैं तो भी कैसे क्या करें। तो अपने क्षेत्र में 2-3 नस्ल की बकरियां जो हैं वे अच्छी मिलते हैं और ज्यादा उत्पादन देते हैं, जैसे जमुनापारी है, बरबरी है और अपने देसी नस्ल की बकरी अपने बुंदेलखंड में ज्यादा अच्छी तरह से पैदावार इनकी होते। बकरी पालन के लिए अपने पंच भैया सबसे पहले तो जो काम करें कि देखो जहां उन्हें रखने हैं एक गुबाड़ो बना लें और रात के ठंड पानी और गर्मी से बचाव के लाने उनके रख रखाव की समुचित व्यवस्था हो वो जरूरी है। एक बकरिया से कई बच्चा पैदा हो जाते हैं। आजकल देखो मांस की भी बहुत ज्यादा मांग है, तो उनमें भी अपने बकरी पालन से भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने भैया का देखो चारे या पत्ती की बहुत ज्यादा कमी हो सकते है, तो उनके लाने दिक्कत भय अपने पंच भैया बकरी पालन कर सके थे। कैसे कि अपने देखी जो उन्हें 70% जनसंख्या गांव में रहा थे और बहुत सारे किसान भैया देखो बहुत छोटी किसानी कर रहे थे या भूमिहीन कृषक हैं या बेरोजगार हैं, तो भी बकरी पालन करके अपने परिवार को भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके थे। बकरी पाल के भी दूध, ऊन, चमड़ा और जो खाद निकले थे वो सब बेच सके थे और वो अपने परिवार के लाने पैसा इकट्ठो हो सकते थे। बकरी के लाने सबसे पहला तो उन्हें जो देखने हैं कि ऐसा क्षेत्र है अपनो इतने पे कम वर्षा हुए थे और इतने को मौसम अनियमित रहा थे, तापमान औसत से अधिक रहा थे जिनमें की बकरी अपने पाल सके थे और जिन्हें आप बकरी पालन की रुचि है तो वे देसी, बरबरी या जमुनापारी नस्ल की बकरियां पालें, जे एक दिन में आधा किलो से कम दूध दे के 1 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो तक दूध इनमें निकले थे। ये बकरियां 10 महीना में इनकी बच्चा तैयार होके 15-16 महीना में ये ब्यावे के लायक हो जाते हैं या दूध देने लगते हैं। हम अपन का बता दें कि इनके जो बच्चा हैं यानी जो बकरा हुए थे उनको वजन लगभग एक साल में 25 से 28 किलो तक हो जाते हैं और बकरिया को वजन 20 से 22-23 किलो तक हो जाते हैं। दूध तो देते ही है। अपने पंच भैया ये जो बकरियां पालत है वे 50% बकरियां जो उन्हें भी जुड़वा बच्चा देती हैं और उनमें से लगभग 50% जो बकरियां हैं वे एक बच्चा देते हैं। इनके बीच में अपने जिनने बकरियां पाली हैं ब्यावे के 2-3 महीना के अंतर से फिर से बकरियां गाभिन हो जाते जो 5 महीने बाद फिर भी आ जाते। अपने पंच भैया एक बकरिया से सब खर्चा निकाल के साल में एक बच्चा से या एक बकरिया से 600 रुपया के आसपास तक मुनाफा कमा सकते हैं। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश को सबसे बड़ा बकरी या भेड़ को बाजार जो है वो कालपी के पास एक जगह है चौरा, उतने हर मंगलवार को बाजार लगते है जहाँ अच्छे से अच्छे नस्ल की बकरियां उतने मिलत हैं। अपने जनपंच महीन का बकरियां पाल रहे हैं वे उतने जाके या अपने आसपास के क्षेत्र में जितने उन्हें अच्छी नस्ल की बकरियां मिलत है ऐसी बकरियां पाले जो दूध अधिक दे और बच्चा जिनके ज्यादा जुड़वा होते जिससे कि एक साथ उन्हें कई लाभ मिल सकते हैं। तो जोन भैया ने अपने बकरियां पाल रहे हैं तो वे ध्यान रखें कि अपने अच्छी नस्ल की बकरियां पाल के वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
1: हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अभी कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें जानकारी दी जा रही थी बकरी पालन से लाभ के बारे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है ए हरिहरन और साथियों का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। ये सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। विषय है बकरी पालन से लाभ।
1: देखो, अपने देश में प्राचीन काल से अपने

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

अभी आप सुन रहे थे एहरियरन और साथियों की आवाजों में श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।

0: कर्पूर केंद्र, ये है आज का चिंतन।
1: प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए सदा आशा ही आशा है। जहाँ आशा और विश्वास है, सफलता भी वहीं है। निराशावादी व्यक्तियों से सफलता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। संसार के सभी मनुष्यों का स्वभाव एवं सोच एक जैसी नहीं है। सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तदनुसार दृष्टिकोण भी भिन्न होंगे। लेकिन जब यही भेद आशा निराशा की लक्ष्मण रेखा खींच देती है, तो सफलता विफलता स्वाभाविक है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। वास्तव में काम करने से ही नाम होता है, या यूं कहें कि काम से ही नाम होता है। बिना काम के नाम बेमानी है। सिर्फ नाम से ही काम नहीं चलता, प्रयास तो सफलता की कुंजी है। जो सफल हुए हैं उनका प्रयास ही तो है जो सफल होता है। जो असफल हुए हैं उनकी प्रयत्नशीलता में कमी है। आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। सफलता हेतु सतत प्रयास अत्यावश्यक है। एक व्यक्ति है जो बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और काम को बीच में ही छोड़कर अपने आप को भाग्य अथवा भगवान पर छोड़ देता है। ये भले उसकी क्षणिक संतुष्टि ही सही, परंतु उसने आगे प्रयास करना ही बंद कर दिया। जबकि दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जो सतत प्रयत्न करता रहता है। वो भगवान का स्मरण करते हुए बार बार विफल होने के बावजूद आशा नहीं छोड़ता। विफलताओं को ईश्वर की इच्छा मानते हुए आगे बढ़ता जाता है और तब तक प्रयत्नशील रहता है और अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। कुछ लोग हैं जो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की किश्ती के भरोसे डूब गए। कहते हैं कि जहाँ चाय है वहाँ राह है। राह पर चल पड़ना ही बहादुरी है। आत्मविश्वास, मजबूत इरादे, साहस और कर्तव्य निष्ठा ही सफलताओं के विभिन्न सोपान है। निराश एवं हताश होकर बैठने का अभिप्राय यही हुआ कि अब प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि अब सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जहाँ प्रयत्न ही नहीं वहाँ आशा कैसी? विश्वास तो पहले ही डगमगा गया, और जहाँ आशा और लक्ष्य नहीं वहाँ प्रयत्न कैसा? इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ कि भविष्य में न प्रयत्न करना है न आशा रखनी है। तो ऐसा तभी होगा जब हमारा लक्ष्य उद्देश्य के प्रति संकल्प सच्चा नहीं होता है। परंतु जिन लोगों का संकल्प दृढ़ है, अपने उद्देश्य के प्रति जो निष्ठावान है, वे कभी साहस नहीं खोते, हिम्मत हारने का नाम ही नहीं लेते। बस उनका संकल्प ही उनकी शक्ति होता है, पूंजी होती है। वे आगे बढ़ते जाते हैं, जो राह चुन लेते हैं बस उसी पर चल पड़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। जो सही ढंग से पवित्र मन से पूरे उत्साह से अपने पवित्र उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्वाभाविक है सफलता प्राप्त उन्हें ही होती है। यदि असफलता भी हाथ लगी तो वे अपनी असफलताओं के कारणों को खोज निकालते हैं, उन्हें दूर करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आशा और विश्वास का बरदहस्त उनके सिर पर होने से प्रयत्नों से मुंह नहीं मोड़ते, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम हजार बार भी यदि प्रयत्न में असफल हो गए तो एक प्रयत्न और करो। इसलिए हम क्यों ना एक प्रयास और करें, अपने भीतर आत्मविश्वास को मजबूत इरादों से दृढ़ कर आशा के बल पर उस समय अथवा तब तक प्रयत्नशील रहें जब तक उस कार्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर लें। एक राजा शत्रु से पराजय उपरांत जब एक गुफा में विश्राम कर रहा था, तब दीवार पर चढ़ते हुए एक कीड़े से जो बार बार फिसल कर गिरने के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था, प्रेरणा लेकर अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। एक लब ने अभ्यास ही गुरु है का मूल मंत्र अपना कर अर्जुन के समान धनुर्धर बन गया था। अर्जुन की चिड़िया की आंख ही लक्ष्य है, बाकी प्रेरणादायी कथा किसे ज्ञात नहीं है। पर आवश्यकता है हमारे दृढ़ संकल्प और बाधाओं से न विचलित होने की इच्छा शक्ति की, जिसकी बदौलत हम मनचाही कार्य सिद्धि कर सकते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। समय हो चला है 6:55। जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संस्कृत में समाचार बस कुछ ही देर में।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में। खेती किसानी पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर। एचपीवी टीकाकरण अभियान में मध्यप्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू होगी। इसमें 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। कल भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश एचपीवी टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ और समय में देकर उसके उपयोग की निगरानी भी की जाए। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूरी कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कर विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाएं।

0: जिस वर्ष में वो छात्रवृत्ति दिए है, विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंह हंस 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्हें भारतीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कहा कि नाम जोड़ने और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें। प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन और सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको वैज्ञानिक तथा तकनीक आधार प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक दस्तावेज और एटलस तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलगंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2026 के अंतर्गत मेपकास द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया गया है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जिलों के भूजल एटलस तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का आकलन प्रभावी होगा। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। ब्रिटेन के कार्डिफ में कल खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबिस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्री मॉनसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज खंडवा और श्योपुर जिलों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के रकबे में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंदसौर में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। धार जिले में आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक त्योहार जुलूसों के संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आगामी कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नवीन तहसील और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कटनी में भी मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिले में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मलेरिया जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समस्याग्रस्त बसाहटों में सार्वजनिक उपयोग हेतु 46 नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं बुंदेली सुगंध के तहत बुंदेली काव्य पाठ।

रे, स्वच्छ जल पीने पानी रे, योजना सबने जानी रे। कि सीमित जल को खर्चा करियो, करियो ना बर्बादी, अरर करियो ना बर्बादी। सीमित जल को खर्चा

अलख जगाने, अरारा ऐसी अलख जगाने, ओ घर घर जांच होए पानी की, बीमारी खो भगाने अमर

ई धरती पे प्रभु को प्यारो नैया, राम नाम भ ई धरती पे प्रभु को प्यारो नैया। क्यों सुमरन करियो श्री रघुवर को, मिले सहारो है गिरधर को, अमर भलो हुवे घर घर को। सुमरन

0: बिन ई धरती पे प्रभु को प्यारो नैया। और राम नाम बिन ई धरती पे प्रभु को प्यारो नैया।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कविता पाठ कर रहे थे अमर सिंह। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये शुरुआती नगमा अभी आपने सुना फिल्म वतन की रखवाली से। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत में बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं तुलसी फिल्म में हेमलता और जसपाल सिंह को। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है।

तुलसी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे हेमलता के साथ जसपाल सिंह को। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। चलिए बढ़ते हैं फिल्म संगीत में आगे, और ये अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म चरणों की सौगंध से। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चरणों की सौगंध में किशोर कुमार के साथ हल्का याग्निक को। शब्द रचना आनंद बख्शी थी और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कुछ और फिल्मी गीत लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: अये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाजिर हैं श्रोताओं इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। यह अगला गीत है बीवी हूं तू ऐसी। इस फिल्म का ये गाना है, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज के साथ, हम राधा पौडवाल की बोल।

फूल गुलाब का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे बेबी हो तो ऐसी फिल्म का। आवाजें मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल की थी, शब्द रचना समीर, कथा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत में आगे और अब सुनते हैं रानी रूपमती। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, भरत व्यास की शब्द रचना है और संगीत एस एन त्रिपाठी का।

तो श्रोताओं, ये 50 के दशक का ये गीत अभी आप सुन रहे थे रानी रूपमती की फिल्म में, और आवाजें थी लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की। शब्द रचना भरत व्यास की थी और संगीत एस एन त्रिपाठी का। गुजरे जमाने के इस गीत के बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे के दौर में, 80 के दशक में आते हैं और सुनते हैं तकदीर का बादशाह। इस फिल्म का गीत बप्पी लहरी और साथियों की आवाजों में, बोल अनजान के हैं और संगीत बप्पी लहरी का।

तकदीर का बादशाह। इस फिल्म का शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और साथियों की आवाजों में, और श्रोताओ यही था फिल्म संगीत का आखिरी गीत। कुछ और फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:30 पर, जो कार्यक्रम होगा एक ही गीतकार जिसमें आपको सुनवाएंगे स्वानंद किरकिरे के रचे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8 बजने को हैं जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार प्रभात बस कुछ ही देर में।

0: के आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में

0: लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत

0: की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के

0: डांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सीटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करे। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दांबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली टुडे। 5-day ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग टू बिगिन टुडे इन इंदौर, मध्य प्रदेश। Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merrivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning.

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए सुनते हैं सुगम गायन के तहत अटल शुक्ला से कुछ भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से भजन के साथ।
1: राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित इस कविता को राग दरबारी में गाने की कोशिश कर रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की रचना अटल शुक्ला की आवाज में। श्रोताओं, आपको बता दें, सुगम गायन में आज कलाकार हैं अटल शुक्ला, और जितने भी भजन आप सुनेंगे उसमें तबला पर संग दे रहे हैं गोपाल विश्वकर्मा और हारमोनियम पर हैं संकेत दुबे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं सूरदास जी के पद।

निर्बल के बलराम। ये भजन अभी आप सुन रहे थे अटल शुक्ला की आवाज में। सुगम गायन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। और चलिए एक बार फिर सुनते हैं सूरदास जी के पद इन्हीं की आवाज में।

सूरदास जी के पद अभी आप सुन रहे थे सुगम गायन के तहत अटल शुक्ला से। और आइए कार्यक्रम के आखिर में एक और भजन।

प्रभु जी मुरे अवगुण चेतना धरो। सूरदास के पदों से ली गई ये रचना भी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, इसके साथ ही सुगम गायन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अटल शुक्ला की आवाज में कुछ भजन। मीडियो वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। समय हो चला है लोक रंग कार्यक्रम का। श्रोताओं, कलाकार हैं बसंती विश्वकर्मा, आपसे सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत और लोक भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के साथ। और बता दें आपको, आज जो भी आप भजन या लोकगीत सुनेंगे उस पे ढोलक पर संगत दे रहे होंगे आत्माराम दुबे, बेंजो पर संजय वंशकार और झींका पर प्रेम कुमार सोनी। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गणेश वंदना के साथ।

लोक रंग की शुरुआत में अभी आपने सुना गणेश वंदना। कलाकार थी बसंती विश्वकर्मा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, इन्हीं से सुनते हैं ये लोक शैलीबद्ध रचना।

अभी आप सुन रहे थे बसंती विश्वकर्मा की आवाज में ये लोक शैलीबद्ध रचना। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं अब ये विवाह गारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे ये गारी बसंती विश्वकर्मा की आवाज में। लोकरंग में आइए आप सुनते हैं इन्हीं से ये दादरा लोकगीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे विवाह गारी। और श्रोताओ, इसके साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आपने बसंती विश्वकर्मा से सुने कुछ बुंदेली लोकगीत और लोक भजन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम एक ही गीतकार। आपको बता दें, आज आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गीतकार स्वानंद किरकिरे के लिखे हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत सुनाएंगे। इनके बारे में बहुत सारी बातें और आपके ही रचे हुए फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

अरे भैया, ऑल इज वेल। ये गीत अभी आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स से कुमार सानू और साथियों की आवाज थी, साथ में सोनू निगम भी थे। उस गीत को रचा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया था शांतनु मोहित्रा ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और आज जो गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 29 अप्रैल सन 1972 को जन्मे स्वानंद किरकिरे एक भारतीय गीतकार, पार्श्व गायक, लेखक, सहायक निर्देशक, अभिनेता और संवाद लेखक भी हैं। आपने हिंदी और मराठी फिल्म और टेलीविजन पर समान रूप से आप सक्रिय रहे हैं। चलिए बातें करेंगे और, लेकिन उसके पहले सुनते हैं इन्हीं का रचा ये अगला प्यारा सा गीत।

0: सिंघम फिल्म में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय को। गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत अजय अतुल का था। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं स्वानंद किरकिरे के रचे हुए कुछ फिल्मी गीत। तो आपको बता दें कि वैसे तो स्वानंद जी ने गायन में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि उनके परिवार में उनके पिता चिंतामणि और माता नीलम्बरी दोनों ही शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत विरासत के रूप में उन्हें मिल गया। यही कारण है कि आपको हम सभी उत्कृष्ट गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं इन्हीं का रचा हुआ ये अगला गीत।
1: सुन लो शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

बॉबी जासूस। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत में संगीत था शांतनु मित्रा का और शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की। शांतनु मित्रा से तो इस नाम से याद आया कि स्वानंद किरकिरे ने शांतनु मित्रा और विधु विनोद चोपड़ा जैसे दिग्गजों के साथ कई नामचीन फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद आप दिल्ली आ गए और यहां से आपकी नाटक रंगमंच की यात्रा शुरू हो गई। दिल्ली के राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में आपके सहपाठी रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुब्रत दत्ता और चितरंजन त्रिपाठी। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र कार्यक्रम, चल रहा है एक ही गीतकार। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे। आपके रचे हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं इनका ही लिखा हुआ ये अगला गीत।

साथियों, एक गीत अभी आप सुन रहे थे पीके फिल्म से। आवाज थी श्या घोषाल और शान की। गीत में संगीत दिया था शांतनु मैत्रा ने और लिखा था स्वानंद किरकिरे ने। साथियों, आपको बता दें कि स्वानंद किरकिरे, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे हैं, अपनी आवाज भी दी है और संगीत भी दिया है। सभी का नाम बताएं ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ खास फिल्में हैं जैसे थ्री इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, काय पोछे, डंकी, पीकू, चमकीला, बर्फी, परिणीता और भी बहुत सारी फिल्में बताएंगे। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है आपको, वो कौन सी फिल्में हैं बताते हैं इस गीत को सुनने के बाद।

श्रोताओ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र कार्यक्रम चल रहा है एक ही गीतकार। आज गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे। आपको बता दें कि आपने बेहतरीन फिल्मों में अभिनय भी किया है, जैसे डंकी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, काला और भी बहुत सारी फिल्में हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिला है। वो फिल्में हैं, पहली है 2006 में आई लगी रहो मुन्ना भाई के गीत बंदे में था दम, और 3 साल बाद एक और फिल्म आई थी 2009 में थ्री इडियट्स, इसका बेहतरीन गीत था बहती हवा सा था वो। इन दोनों ही फिल्मों के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनते हैं अभी का रचा ये अगला गीत।

बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। गीत में संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने और श्रोताओं यही था एक ही गीतकार कार्यक्रम का आखिरी गीत। आज आपने सुने स्वानंद किरकिरी के रचे हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जुड़ते हैं भोपाल केंद्र से और सुनते हैं जिले की चिट्ठी बस कुछ ही देर में।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। नीमच जिले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक टीमों ने निरीक्षण शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसडीएम पराग जैन और तहसीलदार संजय मालवी ने नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में स्थापित अलार्म सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वार की उपलब्धता और कार्यशीलता का बारीकी से जायजा लिया। उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम रातीखेड़ा में एक अनूठी प्रशासनिक पहल देखने को मिली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देर रात तक गांव में रुके और पीएम आवास योजना के लाभार्थी हरिराम के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। कलेक्टर चंद्रा अधिकारियों के दल के साथ बस से करीब 2 घंटे की यात्रा कर खातीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और वन राजस्व से संबंधित मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नीमच प्रशासन ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग वाहनों के बजाय एक ही बस में सवार होकर खातीखेड़ा जनसमस्या निवारण शिविर पहुंचे। प्रशासन की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नीमच नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद पार्क में एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और एसडीएम पराग जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद पार्क परिसर की साफ सफाई की। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन क्रेन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद क्रेन को परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम बड़ी में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने लगभग 3.800 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध अधिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। नीमच जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शनिवार को जावद अनुभाग के विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंगोली, रतनगढ़, मनासा थानों सहित सरवानिया, महाराज, डिकिन और

जाडा चौकियों की कार्य प्रणाली और संसाधनों का जायजा लिया। श्री व्यास ने थानों के निरीक्षण के दौरान हवालात की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने रोशनदानों को सुरक्षित करने, शौचालयों की नियमित सफाई और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले दिनों नीमच जिले के जीरन में सीआरपीएफ जवान संजय पाटीदार का निधन हो गया। 35 वर्षीय श्री पाटीदार सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी रेंज कार्यालय में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उन्हें राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नीमच जिले में 9162 किसानों से कुल 4,80,511 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जो कुल खरीदी का 96% है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल उपार्जित गेहूं में से 4,56,691 क्विंटल गेहूं का सुरक्षित परिवहन पूरा कर लिया गया है। जिले के 12 उपार्जन केंद्रों ने शत प्रतिशत परिवहन का लक्ष्य हासिल किया है। कुल 97% प्रकरणों में स्वीकृति पत्रक जारी किए जा चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 124.21 करोड़ रुपए और स्टेट बोनस के रूप में 1.92 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 126.13 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 102.15 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, जो औसत भुगतान का 86% से अधिक है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समय हो चला है पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा का।

आज के वसुंधरा में चर्चा के विषय हैं क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण में किसानों की भूमिका। होंगी पर्यावरणीय खबरें और फिल्मी गीत। आप सभी श्रोताओं को सुरेंद्र सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में हमने मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव देखे हैं। कभी गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है तो कभी सर्दी असामान्य रूप से कम या अधिक महसूस होती है। बरसात का समय भी पहले जैसा नहीं रहा। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि, जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मौसम परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका असर कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता के कारण फसलों की बुवाई और कटाई का समय प्रभावित होता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मौसम परिवर्तन नई चुनौतियां लेकर आया है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए हमें अपने स्तर पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और प्लास्टिक के प्रयोग को कम से कम जैसे छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्रोताओं, सरकारें भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वर्षा जल संचयन जैसी पहल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, मौसम परिवर्तन केवल वैज्ञानिकों या सरकारों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये हम सभी के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। यदि हम

जागरूक होकर सही कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण दे सकेंगे। इसी संदेश के साथ कि हम सभी अपनी प्रकृति से प्रेम करें, उसकी सुंदरता को निहारें और प्रकृति की खूबसूरती को देखकर कुछ गुनगुनाएं इस तरह से।

0: प्यासा सावन। दोस्तों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। संतोष आनंद के गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता, मौसम परिवर्तन का कृषि पर गहरा और सीधा प्रभाव पड़ता है। अनियमित बारिश, बढ़ते तापमान और मौसमी घटनाओं जैसे कि सूखे, बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण फसलों की पैदावार में भारी कमी आ रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आइए इसी चर्चा को विस्तार से सुनते हैं नवीन प्रजापति की वार्ता के माध्यम से। विषय है मौसम परिवर्तन का खेती पर प्रभाव।
1: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। कृषि की सफलता मुख्य रूप से मौसम और जलवायु पर आधारित होती है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति तथा ऋतुओं का नियमित क्रम खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब इन मौसमीय परिस्थितियों में असामान्य परिवर्तन होने लगते हैं, तो उसे मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। वर्तमान समय में मौसम परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। इसका प्रभाव मानव जीवन, पर्यावरण, जल संसाधनों और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खेती प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित एक गतिविधि है, इसलिए मौसम में होने वाले छोटे बड़े बदलाव भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कभी अत्यधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी असमय ओलावृष्टि, तो कभी तापमान में अत्यधिक वृद्धि या कमी किसानों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। इन परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन घटता है, किसानों की आय प्रभावित होती है और खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न होता है। आइए हम जानते हैं मौसम परिवर्तन के क्या कारण हैं। मौसम परिवर्तन के कई कारण हैं, जिनमें प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार के कारण शामिल हैं। प्रमुख कारण वनों की कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। औद्योगिकरण, कारखानों से निकलने वाली गैसें वातावरण को प्रदूषित करती हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या, पेट्रोल और डीजल के दहन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा है। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इन कारणों से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे मौसम चक्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। खेती पर मौसम परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा के पैटर्न में बदलाव, वर्षा के पैटर्न में बदलाव। खेती के लिए समय पर और पर्याप्त वर्षा आवश्यक होती है। मौसम परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप अनिश्चित हो गया है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखे की स्थिति बन जाती है। अधिक वर्षा से खेतों में जलभराव हो जाता है, फसलों की जड़ें सड़ जाती हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, बुआई और कटाई के कार्य प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर वर्षा की कमी से फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे उत्पादन घट जाता है। तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान बढ़ने का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। अधिक तापमान के कारण पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। गेहूं, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है। मिट्टी की नमी तेजी से समाप्त होती है, सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है। विशेष रूप से गेहूं की फसल तापमान वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। कटाई से पहले तापमान बढ़ने पर दाने ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। सूखे की समस्या, मौसम परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। सूखे के कारण फसलों को पर्याप्त जल नहीं मिलता, बीज अंकुरित नहीं हो पाते, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के कई राज्यों में समय समय पर सूखे की स्थिति कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित

करती है। बाढ़ की बढ़ती घटनाएं, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाढ़ से खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, खेतों में रेत और गाद जमा हो जाती है, कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। बाढ़ के बाद किसानों को पुनः खेती शुरू करने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है। कीट एवं रोगों में वृद्धि, तापमान और आर्द्रता में बदलाव के कारण फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है।

0: पड़ता है। फसल चक्र पर प्रभाव, मौसम परिवर्तन के कारण ऋतुओं का समय बदल रहा है, इससे फसल चक्र प्रभावित होता है। बुआई और कटाई का समय बदल जाता है, फसलों की वृद्धि अवधि प्रभावित होती है तथा उत्पादन में कमी आती है। कई बार किसान पारंपरिक कृषि कैलेंडर का पालन नहीं कर पाते, जिससे नुकसान होता है। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, अत्यधिक वर्षा, सूखा और तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जैविक पदार्थों की मात्रा घटती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है। जल संसाधनों पर प्रभाव, कृषि के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मौसम परिवर्तन के कारण भूजल स्तर घट रहा है, नदियों और तालाबों में पानी की उपलब्धता कम हो रही है, सिंचाई के लिए जल संकट बढ़ रहा है। जल की कमी खेती के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। किसानों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मौसम परिवर्तन का प्रभाव केवल फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रभाव, फसल उत्पादन में कमी आती है, किसानों की आय घटती है, ऋण का बोझ बढ़ता है, कृषि लागत में भी वृद्धि होती है। सामाजिक प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन बढ़ता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, किसानों का जीवन स्तर प्रभावित होता है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, यदि मौसम परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन लगातार घटता है तो खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खाद्यान्न की कमी हो सकती है, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं, गरीब को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कृषि क्षेत्र को मौसम परिवर्तन के प्रभावों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। मौसम परिवर्तन से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं? जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, तालाबों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनानी चाहिए, उन्नत बीजों का उपयोग, सूखा एवं बाढ़ सहनशील बीजों का विकास और उपयोग करना चाहिए, कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों को अपनाना चाहिए, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक खेती को अपनाना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, फसल विविधीकरण, केवल एक फसल पर निर्भर रहने की बजाय विभिन्न फसलों की खेती करनी चाहिए, इससे जोखिम कम होता है, सरकारी सहायता, फसल बीमा योजना का विस्तार करना चाहिए, किसानों को समय पर सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जलवायु अनुकूल कृषि नीतियां लागू करना चाहिए। मौसम परिवर्तन आज कृषि क्षेत्र के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि, सूखा बाढ़, कीट एवं रोगों का बढ़ता प्रकोप और जल संकट जैसी समस्याएं खेती को प्रभावित कर रही हैं। इसका सीधा प्रभाव किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कृषि उत्पादन और अधिक प्रभावित हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, वैज्ञानिकों, किसानों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, उन्नत बीजों का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे उपाय अपनाकर मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। सतत और जलवायु अनुकूल कृषि ही भविष्य की कृषि का आधार बनेगी तथा किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, मौसम परिवर्तन का खेती पर प्रभाव। वार्ताकार थे नवीन प्रजापति। आइए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी चर्चा की ओर, पर्यावरण संरक्षण में किसानों की भूमिका। श्रोताओं, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि प्रकृति के सच्चे संरक्षक भी हैं। उनका जीवन भूमि, जल, वायु और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते

प्रदूषण, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां इन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैविक खेती इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम या बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। दोस्तों, जल संरक्षण में भी किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान पानी की बचत कर सकते हैं। आज जब देश के कई हिस्सों में जल संकट बढ़ रहा है, तब ये पहल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रोताओं, पेड़ पौधों का संरक्षण भी, वृक्षारोपण भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई किसान कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाकर खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलता है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। फसल अवशेषों को जलाने की समस्या भी पर्यावरण के लिए चिंता का विषय रही है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी के उपयोगी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि किसान इन अवशेषों का उपयोग खाद, पशु चारे या जैव ऊर्जा के रूप में करें तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा फसल चक्र अपनाने, मिश्रित खेती करने और प्राकृतिक संसाधनों के असंतुलित उपयोग से भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ये तरीके मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करते हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं भी किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। प्रशिक्षित कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रिय श्रोताओं, किसानों और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसान पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी उन्हें बेहतर उत्पादन और समृद्धि प्रदान करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम किसानों और प्रयासों का सम्मान करें और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में उनका सहयोग करें। आइए हम सभी मिलकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें और स्वस्थ, हरित और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। देखा गया है दोस्तों कि किसानों की फसल जब अच्छी होती है तो वे खुशी से झूम उठते हैं और मिलकर खुशी के गीत गाते हैं कुछ इस तरह से।

उपकार। दोस्तों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गुलशन बावरा के गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए दोस्तों, अब चलते हैं पर्यावरणीय खबरों की ओर, सुनते हैं कुछ मुख्य समाचार। श्रोता, बक्सवाहा के जंगल काटने की तैयारियां एक बार फिर से हो रही हैं। हीरा भंडार के लिए 382.13 हेक्टेयर जंगल में 2.15 लाख पेड़ काटने का फैसला अभी हाईकोर्ट और एनजीटी में विचाराधीन होने से इनकी कटाई रुकी हुई है। लेकिन इसी बीच सरकार ने सनफ्लेक्स आयरन एंड स्टील कंपनी को इसी जंगल में 2 खदानों की लीज मंजूर कर दी है। एक खदान लोह अयस्क और दूसरी खदान रॉक फॉरेस्ट की है। दोनों खदानों के लिए 1139.79 हेक्टेयर वन भूमि में पेड़ों को काटने की तैयारी है। जहां पेड़ों को काटने की तैयारी है तो वो जंगल टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है और वहां बाघों की गणना के दौरान 6 बाघों का मूवमेंट ट्रैप कैमरा में देखा गया है। बाजना लोह अयस्क खदान भारतीय खान ब्यूरो ने 223 में मंजूर की थी। इसमें 96 हेक्टेयर से हर साल 2.5 लाख टन खनन किया जाएगा। वहीं सूरजपुरा रॉक फॉस्फेट खदान की नीलामी अप्रैल 2025 में मंजूर की गई थी। कंपनी को कंपोजिट लाइसेंस मिला है। इस लाइसेंस से कंपनी ने सर्वे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सर्वे के आधार पर खनन प्लान तैयार होगा। इसी प्लान के अनुसार खनन लीच और गणना करके पेड़ों की कटाई मंजूर की जाएगी। श्रोताओं, इसी तरह की खबरें पन्ना नेशनल पार्क से भी आ रही हैं। यहां खजुराहो पन्ना रेल लाइन परियोजना में रेलवे अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे ने जिस रूट पर लाइन बिछाने के लिए पहले 24.78 करोड़ रुपए खर्च करके 54,578 पेड़ कटवा दिए थे, अब उसी रूट को बदल दिया गया है। रेलवे का कहना है कि पुराने डिजाइन में 6 बड़े मोड़ थे जहां ट्रेन संचालन असुरक्षित था। दरअसल ललितपुर सिंगरौली परियोजना के तहत खजुराहो से पन्ना को जोड़ने वाली ये रेल लाइन पहाड़ियों और अजयगढ़ घाटी के बीच से गुजरनी है। रेलवे ने 2021 में रूट डिजाइन फाइनल किया था। फिर 2015 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई और जंगल में लगे 54,578 पेड़ काटे गए। अब रेलवे ने पुराना डिजाइन बदल दिया है। इस नए रूट के लिए 258 हेक्टेयर जंगल के दोबारा अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि 50,000 और पेड़ कटेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो जंगल और जंगली जीवों को बचाने के लिए करोड़ों पैसा खर्च किया जा रहा है,

वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर जंगलों को साफ किया जा रहा है, यानी विकास पर्यावरण संरक्षण पर भारी पड़ रहा है और वन जीवों के आवासों को उजाड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी पर्यावरणीय खबरें। इसी के साथ आज का वसुंधरा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रवक्ता सरिंदर सिंह, प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। और समय हो चला है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त सविता मिश्रा। श्रोता किसी ने बड़ा ही अच्छा सा लिखा है कि बिजनेस का एक आसान सा नियम होता है कि अगर आप उन चीजों को पहले करते हैं जो सरल है तो आप वास्तव में बहुत अधिक प्रगति कर सकते हैं। और ये बात हाल फिलहाल हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है कि आकाशवाणी छतरपुर अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पे आप इनको सुन सकते हैं, अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। मोबाइल ऐप है न्यूज ऑन AIR, आप इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और हमारा आकाशवाणी केंद्र छतरपुर और जितने भी केंद्र हैं उन सभी के कार्यक्रमों को आप अब बड़ी आसानी से सुन सकते हैं और अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, मेल पर भी भेज सकते हैं। मेल का हमारा जो पता है वो है AIR छतरपुर 1976@gmail.com। और एक और खुशी की बात है कि फेसबुक पेज है हमारा आकाशवाणी छतरपुर, इस पर भी आप अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

वो दिलवर जानिया। आपके पसंद कार्यक्रम का ये पहला मोहब्बत से लवडेज गीत अभी आपने सुना, फिल्म प्यार झुकता नहीं से। आवाजें लता जी के साथ शब्बीर कुमार की थी और गीत को लिखा था SH बिहारी ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस खूबसूरत से गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं। ये मेल है हम तक, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, कुमकुम सुरलकर और उनके सभी मित्रगण। ये पत्र आया है अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य, जवाहरनगर, उदयपुर से बाबूभाई, भारती देवी और उनके परिवार के सभी सदस्य, गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी, शगुन और उनके परिवार के सभी सदस्य, हिंगोली महाराष्ट्र से इसी गीत को पसंद किया था शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़खे, अंबेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। और ये मेल आया है जवाहरनगर दुर्ग से। ये हमारे श्रोता हैं RC कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े। एक मेल और है गांव फरासी जिला हिसार से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेंद्र कुमार डुडी। तो देखिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद हुई पूरी और बहुत खुशी होती है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म अब हो गए हैं कि आप हमारे आकाशवाणी छतरपुर को बड़ी ही आसानी के साथ सुन सकते हैं। तो आप लोग भी बखूबी इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपनी पसंद हम तक भेजते हैं। तो चलिए, दूर दराज से आप सभी लोग इसी तरह से जुड़िए हमारे आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से। फेसबुक के पेज पर भी लाइव चल रहा है कार्यक्रम। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

आशिकी। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू को। संगीत नदीम श्रवण का था और गीत को लिखा था समीर ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं, ये फेसबुक पेज से हमें नाम प्राप्त हुए हैं। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये श्रोता है मोहम्मद सईद अवासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सोहान, अरजान, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा था मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूपी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना भारती, श्रीमती ओमवती, खनक शगु, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। इसी गीत को सुनना चाहा था जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश। ये फेसबुक पेज पे ही नाम हमें मिले हैं। सागर लखनादौन जिला शिवनी मध्य प्रदेश से लाडलाजी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे और उनके परिवार के सभी सदस्य। छोटी बाजार गणेश चौक छिंदवाड़ा से माही दुबे, पलक दुबे, मधुर दुबे, सतीश लाला दुबे और राजेंद्र दुबे। ये फरमाइश भेजी है ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधनधारा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। और ये नाम भी आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से श्रोता हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। तो चलिए श्रोताओं, आप सभी की हुई फरमाइश पूरी। आपकी पसंद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। यह गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कार्यक्रम चल रहा है आपकी ही पसंद पर। यह गीत था साजन फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी थी कुमार सानू ने। शब्द रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं। फेसबुक पेज पर ये नाम हमें मिले हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेन गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी दिशा गोस्वामी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, योगिता पाल, निवेदिता, और शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, ये नाम है। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हमारे श्रोता थे। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत सलामी फिल्म से। आवाज है कुमार सानू की, संगीत नदीम श्रवण का है, अनवर सागर ने इस गीत को लिखा है। चलिए और बता दें आपको फरमाइश के इस गीत को सुनने के लिए हम तक जो फरमाइश भेजी है वो ये है। चलिए अब उठा लेते हैं थोड़े से पत्र। ये पत्र हम तक आया है महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, लेवाखेल मोहल्ला चांदुर विश्वा से नारायण भावखर से, ललिता खर से, परीखर से, गणेश कार्तिक भावखर से, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज, सुजला ज्योति, रियांश और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सभी मिलकर सुनते हैं सलामी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, दिल को सुकून देते फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से, और ये हैं सभी आपकी ही पसंद पर। चलिए, कार्यक्रम का ये अगला गीत तुम बिन फिल्म का है। शीर्षक गीत है, चित्रा की आवाज है, फैज अनवर और निखिल विनय का गीत संगीत है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, स्वीट बेबी गव्या, इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु, रोनिका यादव, समस्त यादव परिवार, इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, पलेरा टीकमगढ़ से, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो चलिए, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बस कुछ ही देर में।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। और मित्रों कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रोताओ, हम जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, उनमें से सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। कई बहुत गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं तो कई शांत, कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह। तो आज हमने हमारे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कुछ यही विषय चुना है आप सभी के लिए कि हमको जब गुस्सा आता है तो हम उस पे नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: अपना नाम बताएं।
1: दयाशंकर कुशवाहा, छतरपुर मध्य प्रदेश। हेलो
0: जी, फिर से बताएं अपना नाम।
1: दयाशंकर कुशवाहा, छतरपुर से।
0: जी, हमारे आज की बातचीत का विषय है कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह से करते हैं। तो गुस्सा सभी को आता है, जब हमें गुस्सा आता है बहुत तो हम किस तरह से अपने आप को रोकते हैं, कुछ बताएंगे?
1: शांत रहना पड़ता है गुस्सा के लिए।
0: जब गुस्सा आता है तब आप शांत हो जाते हैं।
1: शांति रहना पड़ेगा, कहा है बच्चों।
0: हाँ, जो तो आपने सही कही कि भाई शांत रहकर ही गुस्से को अपन रोक सकते हैं। सामने वाला हमको शांत देखकर फिर अपने आप स्वतः ही शांत हो जाता है।
1: जी,
0: है ना, क्योंकि एक जन गुस्सा करता है, सामने वाला भी क्रोध करे तो बात जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आप मतलब शांत हो जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है?
1: हाँ जी, जी।
0: तो घर वाले समझ जाते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है?
1: जी जी जी।
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार। बात हमारी गीत आपके नहीं, बात आपकी, गीत हमारे। आपने उल्टा बोल दिया।
0: बोलना था वो हम बोल गए।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जान सकते हैं हम किससे बात कर रहे हैं?
0: अनोखे सिंह।
1: अनोखे सिंह।
0: हाँ हाँ
1: जी, आपसे तो पहले भी बातचीत हुई है मेरी।
0: हाँ, ये जून में पहली बार हो रही बात।
1: नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ मैं आपसे बात। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बाग जिला धार।
1: धार से बोल रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो उस पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्से को, आप कैसे करते हैं?
0: गुस्सा तो अपने आप आता नहीं सर, बाकी कारण वंश अगर आए ऐसा तो उसको उतारना भी जरूरी है सर जी, किसी न किसी रूप में, भले नहा के उतारो के विवाद करके उतारो।
1: तो आप किस तरह उतारते हैं?
0: हम तो सर जी शासन और परमात्मा और पब्लिक का नियम है, तो हमको भी कोई गुस्सा दिला देता है या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो बिल्कुल हम उस गुस्से को उससे
1: उतारते हैं
0: सर,
1: सामने वाले पे उतारते हैं गुस्सा।
0: हाँ हाँ, अगर वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो। नहीं तो अनजाने में तो सब एक दूसरे को माफ करते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो माफ कर देते हैं अनजाने में कुछ बात।
1: चलिए, तो आप गुस्सा उतार के फिर आपका गुस्सा शांत हो जाता है?
0: शांत नहीं, गुस्सा जब भी उतारो कि हमको सबक मिले या सामने वालों को सबक मिले, फोकट गुस्सा थोड़ी होता है।
1: फोकट गुस्सा नहीं होते।
0: गुस्सा भी कोई चीज से उत्पन्न होता है, वो चीजों की तो खुराक है ही नहीं हमने।
1: जी
0: भाई, आदमी की जैसी खुराक, जैसी आयु, जैसा वैसा उसका

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नाम बताएं।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: जी मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ, खापरखेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश।
0: रायसेन से बोल रहे हैं तुलसीराम जी।
1: रायसेन जिला मेरा रायसेन है,
0: जी
1: ग्राम खापरखेड़ा, मतलब आपके भोपाल से 160 किलोमीटर
0: जी
1: दूर
0: जी
1: है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे आज की बातचीत का विषय है जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, आप कुछ बताएंगे?
1: जी गुस्सा का कारण तो ये, जैसा हम गुस्सा कर रहे हैं तो अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हानि जरूर होगी, लेकिन जहां तक हो सके गुस्से को मतलब धीरे बन, मतलब धीरे से काम करो। कुछ भी काम करना आराम से काम लो, उसमें क्या आपने फायदा दिए। गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही भाई, गुस्सा जब अपन करते हैं
1: गुस्सा
0: तो
1: गुस्सा
0: विवेक
1: एक
0: काम नहीं
1: अग्नि,
0: करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना।
1: यहाँ जुड़ क्या, गुस्सा एक अग्नि का रूप होता। और थोड़ी धीमी बात करो या मतलब धीरे काम करो, कुछ भी काम, उसमें गुस्सा मत लाओ, तो भी एक मतलब संतुष्टि होती है उसमें। असंतोष कभी नहीं होता, गुस्सा में असंतोष होता।
0: जी।
1: ये कभी करो कुछ काम, या घर बच्चों से लड़ो या कुछ काम करो, गुस्सा में कभी मत, गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही, गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं, ये बात आपने अच्छी कही।
1: जैसे हम किसान लोग हैं जी, तो अभी ट्रैक्टर चल रहा हो खेत में, अगर हम सोचे भाई हमारे लिए गर्मी लग रही है, घाम लग रहा है, हम छोड़ घर भाग जाए, नहीं, किसान ही काम है, मतलब थोड़े उसको करना भी पड़ेगा, गर्मी भी लगेगा, घाम भी मतलब लगेगा। किसान तो अपन है तो करना पड़ेगा किसान ही काम। कई
0: करना पड़ेगा। अब
1: लोग
0: गुस्सा
1: गुस्सा में
0: दिखाएं
1: करने
0: घर
1: लगते हैं
0: वालों
1: काम
0: पे,
1: वाम।
0: दिखाएं कि भाई इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं आराम से, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना।
1: जी
0: आपसे
1: हाँ।
0: बातचीत करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। रमेश कोटवानी सतना से।
0: सतना से कोटवानी जी, आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उसको रोकते कैसे हैं, जब हमको गुस्सा आता है किसी पर बहुत।
1: आता है तो रोकते हो गया, वही है, हो गया, शांत कर लेते अपने आप।
0: अच्छा, चुप हो जाते हैं एकदम से
1: हाँ
0: तो बातचीत बढ़ ही नहीं पाती है,
1: हाँ बढ़ने नहीं देते बात को।
0: बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं आप। थोड़ी देर यदि हम
1: हाँ,
0: उस समय शांत हो जाएं, या
1: आज
0: हम
1: पहली आज हमारा पहली बार फोन लगा है।
0: जी,
1: आप कौन बोल रहे दीदी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: अच्छा, चाय पड़क जी,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। चलिए, अच्छी बात बताई आपने कि आप शांत हो जाते हैं तो गुस्सा धीरे से अपने आप समय के साथ गुस्सा भी चला जाता है।
1: जी जी जी
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार,
1: जी। मैम मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोक नगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: अशोक नगर से सूर्य प्रताप
1: यादव
0: यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: बढ़िया। और अशोक नगर में सब बढ़िया
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: जी। कार्यक्रम का विषय है बात आपकी गीत हमारे, है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: इसमें इसमें हमारा विषय है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसको कैसे रोकते हैं। किसी पर गुस्सा आता है जब हमको,
1: किसी पर अगर गुस्सा आए हमें तो सबसे पहले तो हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, संयम रहना चाहिए। थोड़ा सा गुस्से में बोले गए जो शब्द होते हैं ना, वो मतलब एक तीर की तरह होते हैं, जो
0: तीर की
1: अगर
0: तरह चुभते हैं।
1: कमान से छूट जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपने बोलने पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं।
0: क्या बात कही आपने, 100 बात की एक बात कह दी बिल्कुल, कि गुस्सा करें लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, संयमित व्यवहार करें, बोलें ऐसा जो चुभे ना लोगों को, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहते
1: अगर
0: भी है ना
1: गुस्से
0: कि
1: में आए
0: भाई शब्दों के जो घाव होते हैं वो नहीं भरते,
1: वो नहीं भरते।
0: आपके शस्त्र का घाव भर जाएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तीर
1: सही
0: का
1: बात
0: घाव
1: है
0: भर जाता है लेकिन शब्दों का जो हम घाव देते हैं किसी को वो नहीं भर पाता। हमेशा याद
1: जी।
0: रहता है सामने वाले को कि इसने हमसे ऐसा कहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छी बात। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी मैम। धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते, जोर से बोलें थोड़ा।
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े, छत्तीसगढ़ से। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी, हमारी आज की बातचीत का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं।
1: जी, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि जिस भी समय हमें थोड़ी उत्तेजना और गुस्सा का भाव हो तो उस समय कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ध्यान को भटका ले। कहने का मतलब है या तो वहां से हट जाए या फिर दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। फिर इससे होगा ये कि जो हम हमारे मनोभाव रहते हैं वो हम किसी और के ऊपर उसको मतलब नहीं ये करेंगे, क्योंकि
0: नहीं कर पाते।
1: हम उस मनोदशा में जब गुस्से का भाव में होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला को गलत लगे। तो सबसे बेहतर यही है कि उस समय हम थोड़ा सा अपने मन को काबू करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। वैसे भी देखो ना, होता ये है कि जैसे हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, वो उस समय नहीं है मान लो घर में मौजूद, पर हमें उसके किसी व्यवहार से आ रहा है, और जब तक हम उससे मिलते हैं 2-4 घंटे हो जाते हैं तो आप

0: देखिए, गुस्सा स्वतः ही बहुत कुछ शांत हो जाता है।
1: जी
0: अगर उसी समय वो सामने होता है तो हम हो सकता है बहुत कुछ कहें उससे, पर
1: जी
0: जब बहुत समय बाद मिलता है तो अपने आप गुस्सा जो है स्वतः धीरे धीरे चला जाता है। तो ये
1: जी
0: बात अच्छी बताई कि हम हमारे मन को दूसरी जगह केंद्रित कर लें।
1: जी
0: जी, नमस्कार।
2: जरा

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार,
1: मैं विवेक व्यास बोलता हूँ मैडम, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला
0: जी।
1: हेलो
0: हाँ, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी बातचीत का विषय है जब हम गुस्सा करते हैं किसी पर या हमें गुस्सा आता है बहुत, तब हम क्या करते हैं उस समय, हम गुस्से को नियंत्रित कैसे करते हैं।
1: देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आप मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: छाया पाठक।
1: छाया जी, नमस्कार। देखिए मेरा ये कहना है, मेरा तो ये मानना है कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जो है वो अब कहीं और लगाने की कोशिश करें, है ना। जैसे यार सबका अपना अपना रहता है, अब मैं अपना बताऊं कि मैं तो अपने प्रभु में का नाम सिमरन करने लगता हूँ, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है ना, या कोई अच्छा म्यूजिक, यदि कोई अच्छा गाना है अपनों को पसंद है
0: वो तो चला
1: गाना सोच लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: या सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं कि आप चुपचाप 10 तक गिनती गिनिए।
0: अरे वाह,
1: है ना,
0: 10 तक गिनती गिनिए मन में।
1: अपन को देखिए, क्योंकि क्या होता है
0: जी,
1: ये वो जो अपन को गुस्सा आता है, यदि अपन ने उस समय उसको कंट्रोल कर लिया तो आप फिर शांत हो जाएंगे। फिर आपके मन में ये जरूर रहेगा यार कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन
0: गलत किया,
1: उतनी वो जो तीव्रता रहती है गुस्से की वो
0: खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए कई लोग लंबी सांसें लेने लगते हैं, कई लोग संगीत सुनते हैं, कई अपनी पसंद का काम करते हैं, कई कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कई घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग

0: अपने गुस्से को
1: क्योंकि
0: शांत
1: जो
0: करते
1: क्रोध
0: हैं।
1: होता है ना मैडम, क्रोध जो होता है वो अग्नि से भी तेज होता है, गा भी गया है ना। और उस समय तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपना शांत होता है ना क्रोध, तो अपन सोच गया अपन ने बहुत गलत किया
0: चले,
1: है ना,
0: बहुत
1: ये
0: अच्छी
1: बात
0: बात आपने
1: तो अपन
0: बताई
1: संभाल भी सकते। जी
0: विवेक जी, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ मैं?
1: हरदयाल जाटव जिला से अपनी मत कर दी
0: हरदयाल यादव
1: जाटव जाटव
0: जादव
1: हरदयाल जाटव
0: जी, कहाँ से?
1: सेपरी जिला से।
0: सीपरी से। हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो उसको हम
1: हाँ
0: किस तरह से उस पर कंट्रोल करते हैं। आप किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं उस समय?
1: गुस्सा को तो मैडम जी ये है कि अपने आप को काबू में करना पड़ता है और शांत करना पड़ता है।
0: कैसे काबू में करते हैं आप?
1: माने ऐसे करते कि अपन बगल माने शांत करने के लिए निकल जाते हैं, अंत माने
0: हाँ
1: बरकत दे जाते हैं किसी को,
0: जी,
1: माने काबू में कर लेते हैं शांत करके अपने।
0: नहीं, हम अपने आप को कैसे, हमको जब गुस्सा आता है किसी पर, हमको आता है, तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं?
1: अपने मन को तो कंट्रोल मैडम जी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझको
0: भगवान का नाम
1: तसल्ली
0: लेते हैं।
1: दो, कंट्रोल में अपने आप हो जाता है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। इस बहाने एक पन दो काज।
1: हाँ जी
0: देखिए, भगवान का नाम भी हो गया,
1: हाँ जी
0: तो हम तो ये चाहेंगे कि आपको हरदयाल जी बार बार गुस्सा आए
1: नहीं नहीं जी,
0: ताकि
1: गुस्सा
0: ताकि
1: तो नहीं
0: आप
1: होता,
0: ईश्वर
1: लेकिन
0: का नाम
1: सामने
0: लेते रहें इसी तरह।
1: अगर सामने वाला लड़ता है तो अपन शांत रहे होते हैं, ठंडे मुंह से बात करते हैं। गुस्सा पर कभी जिंदगी में आया नहीं।
0: नहीं आया आपको?
1: नहीं नहीं
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी,
1: नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। आए
1: मैडम
0: बिना
1: आपका नाम? मैडम
0: छाया पाठक।
1: आपसे पहले ही बात हो चुकी है?
0: जी, हो
1: हाँ
0: चुकी
1: जी,
0: बात है।
1: मैंने सर जैसे भी लगाया घंटी गई, मैं उठाया कॉल नहीं, पर मैंने लगाना बंद कर, जब देखो तो ट्राई करके।
0: अच्छा, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमारा विषय था कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह करें, उसको शांत करने के लिए क्या उपाय करें। बहुत से श्रोताओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। कभी कभी ये भी होता है कि हम उस जगह को छोड़ दें या फिर हम उल्टी गिनती शुरू कर दें, जैसे 10 से लेकर 1, 10, 9, 8, 7, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हम कुछ डायरी लिखने लगे, कल्पना मन में कर लें कि भाई हमें गुस्सा शांत रखना है, नहीं हमें नहीं बोलना। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बाहर टहलने निकल जाएं, अपनी मनपसंद संगीत सुन लें, या फिर शांत होकर के गहरी गहरी सांसें लें। ये बहुत से उपाय हैं जो हमारे गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम से आपसे अनुमति लेती हूँ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेशभर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की है कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य एचपीवी टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश, गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसे लेकर आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म साया से। आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है, बोल आनंद बख्शी के हैं। इसे संगीत से सजाया है एमएम करीम ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजाराम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। रूपा खेड़ी से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम और दशरथ बागवान। आप सभी की पसंद है फिल्म साया का ये गीत सुनने की। लीजिए सुनिए।

सारणी जिला बैतूल से गणेश सिमैया, विजय, अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि वाद्य, पंजाब राव और संदीप पाटिल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तान्या, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म ना तुम जानो ना हम का गीत अभिजीत और पमेला जैन की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

नीलेश मिश्रा का लिखा गीत सुनिए जिसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। आवाज श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम है जिस्म। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। साथ ही सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जिस्म का ये गीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, प्रिया, जीत और इच्छा।

आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राज का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की चौथी कड़ी।

सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी को प्रसव का दर्द शुरू होता है। वो एक लड़के को जन्म देती है जो पैदा होते ही मर जाता है। नारायणी भगवान की इच्छा को अपने पाप के बोझ से मुक्त मिलने की बात सोचकर इस दुख को सहन कर लेती है। शिबू यशवंत के यूनियन में प्रतिनिधि बनने की खुशी में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाता है। ब्राह्मण पंडित दलितों की पूजा करवाने से इनकार कर देता है तो यशवंत स्वयं पंडित की भूमिका निभाता है। चारेंगखेरा से ठाकुर साहब का साई नदी पर तबादला हो जाता है। रामू बामू नामक दो जुड़वा भाइयों के चेहरे ठाकुर साहब को देखते ही हिल जाते हैं। विजिलेंस ब्रांच का एसपी ठाकुर साहब से मिलता है और सीमेंट घोटाले के मामले में सन 1974 की फाइल मांगता है। फाइल लेकर एसपी चला जाता है। यूनियन की बैठक होती है। बलबीर स्वामी मजदूरों की मांगे मनवाने के लिए हड़ताल को अंतिम अस्त्र बताता है। उधर नारायणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिबू बहुत खुश होता है और सभी को यह खुशखबरी सुनाने जाता है। अब आगे

0: जगन्नाथ।
1: अरे बेटा जगन्नाथ।
2: क्या है बापू?
0: बेटा एक गिलास पानी तो पिला।
2: अभी लाया बापू।
0: बेचारा जगन्नाथ, अरे अभी 10 बरस का ही तो है, पढ़ने लिखने का कितना शौक है इसे। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन लेकिन जगन्नाथ को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने की बड़ी तमन्ना है मेरी, लेकिन कहां से, पेट भरने लायक भी तो नहीं कमा पाता हूं, फिर भला इसे स्कूल कैसे भेज सकता हूं। हाँ, कैसे भेज सकता हूं। और वो जगन्नाथ की मां बेचारी ने 2 बरस पहले बीमारी और भूख के कारण दम तोड़ दिया। अरे मजबूरन साई नदी में बहा देना पड़ा। तब बेचारे नन्हे जगन्नाथ ने अपनी मां की लाश की कैसी दुर्दशा देखी थी, कैसी दुर्दशा।

0: अरे शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
1: जगन्नाथ, चल नदी में नहाते हैं।
0: नहीं, मेरा बापू कहता है कि नदी में नहाने से मैं डूब जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
1: गहरे पानी में जाएगा तब डूबेगा ना। देख, उस तरफ गहरा पानी नहीं है, वहाँ हम नहीं डूबेंगे, चल ना।
0: नहीं, अगर मेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा।
1: तेरे बापू को कौन बताएगा, तू खुद?
0: नहीं नहीं, भला मैं क्यों बताऊंगा?
1: तो मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर भला कैसे पता चलेगा तेरे बापू को?
0: इसका मतलब बापू को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नदी में नहाया था।
1: यही तो।
0: चल चल, बहुत मजा आएगा। चल चल चल, चल, चल।

0: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा बाबा कहता है कि चील और गिद्ध वहीं आते हैं जहाँ कोई लाश होती है।
0: अच्छा, तो क्या यहाँ भी कोई लाश पड़ी होगी?
1: शायद।
0: चल शंभू, घर वापस चलते हैं।
1: तू डरता क्यों है? गिद्ध लाश को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। अरे उधर देख जगन्नाथ।
0: हाँ, किधर?
1: उधर
0: क्या है उधर?
1: वो नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है।
0: हाँ, हाँ। लगती तो लाश ही है, किसकी होगी शंभू?
1: क्या पता, चल चल पास चलकर देखते हैं।
0: अच्छा चल चल चल, चल। शंभू,
1: हाँ
0: शायद ये किसी औरत की लाश है।
1: लाश, उसने धोती पहन रखी है।
0: हाँ चल, थोड़ा और पास चलकर देखते हैं।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना,
1: मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना शंभू।
1: नहीं, अरे जगन्नाथ।
0: हाँ?
1: ये तो तेरी माँ की लाश है।
0: ये तो सचमुच मेरी माँ की लाश है। माँ, माँ,
1: जगन्नाथ, जगन्नाथ, तू कहाँ जा रहा है?
0: मेरी माँ को खा रही है।
1: जगन्नाथ, जगन्नाथ।

0: बापू बापू पानी।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ, ये लो बापू।
1: जगन्नाथ। हाँ बेटा, हाँ मेरे पास बैठ।
0: अच्छा बापू।
1: जगन्नाथ
0: बापू। बापू
1: जगन्नाथ
0: बापू।
2: क्या नींद में हो शिवू भैया?
3: अरे लिचू भैया, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
2: लगता है सो रहे थे।
3: अरे नहीं लिचू भैया, सो तो मुन्ना रहा है। अपनी आंखों में नींद कहा। हाँ वैसे एक बात है, भगवान ने हमें धन भले ही ना दिया हो मगर नींद खूब दी है। अरे इतनी नींद दी है कि बस हम तो छक गए, अरे नींद से ऊब गए हैं हम तो।
2: मतलब शिवू भैया कि खटिया भी हमसे पनाह मांग गई है।
3: लिच्चू भैया, और सुनाओ लिच्चू भैया, क्या कोई नई खबर है?
2: अरे खबर क्या है शिवू, हड़ताल होगी हड़ताल, यानी महाभारत होगा।
3: अच्छा?
2: अरे फिर पिसेंगे हम गरीब। कौन है हम गरीबों की सुध लेने वाला? कोई नहीं कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
3: हाँ लिचू भैया, ये सब तो दादा परदादा के समय से चला ही आ रहा है।
2: हाँ भैया,
3: पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब कंपनी में काम करते हैं। पहले साहूकार खून चूसते थे, अब कंपनी वाले चूसते हैं। लिचू भैया, हमारे लिए तो वो मरे हुए जानवरों का धंधा ही अच्छा था।
2: अजी काहे का अच्छा था, पहले तो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ो, हड्डियां इकट्ठी करो, फिर जिस गांव में जाकर बैठो वहीं लात और घूंसे मिलते थे। अरे गालियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। दूसरे गांव जाओ तो वहां भी यही कहानी। अरे हर गांव की एक सी कहानी है शिव।

0: एक सी।
1: हाँ लीचू, ठीक कहता है तू। वैसे लीचू,
0: हाँ,
1: एक बात सोची है तूने कभी?
0: मैं तो रोज ही बहुत सी बातें सोचता हूँ शिव,
1: मगर तू किस बात की बात कर रहा है?
2: अरे लीचू, मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई हमारी जिंदगी की सच्ची सच्ची कहानी लिखे तो क्या हो?
0: तू भी कैसी अजीब बात सोचता है शिव। अरे क्या हम कोई राजा महाराजा हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई जागीरदार हैं या जमींदार हैं जो कोई हमारी जिंदगी पर कहानी लिखेगा? अरे किसे है हमसे हमदर्दी शिबू, किसे है?
2: क्यों, क्या फिल्मों में गरीब लोगों की कहानी नहीं दिखाते?
1: अरे सच बात तो यह है लीचू कि फिल्मों में जितना दिखाते हैं ना, हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है।
0: हाँ तो ठीक कहता है शिबू, जितना दर्द हमारी जिंदगी में है, अरे उतना तो रोज पीटे जाने वाले जानवरों की जिंदगी में भी नहीं होता।
1: लीचू, कभी सोचा है तूने ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
0: बहुत सोचा है शिबू, एक बार नहीं हजार बार सोचा है।
1: तो कुछ समझ में आया, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे
0: साथ? हाँ आया, और इसके तीन कारण हैं।
1: तीन कारण?
0: हाँ,
1: कौन कौन से तीन कारण
0: शिबू? पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में मजदूरों की भरमार है। अरे एक मजदूर को हटाओ तो उसकी जगह लेने के लिए 10 मजदूर तैयार खड़े हैं। अब देखो ना, हम मजदूरों के संतान अधिक होती है जबकि साहब लोगों के घरों में कम। अरे उनकी मांग है और हमारी दुत्कार।
1: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है। और दूसरा कारण?
0: और दूसरा, हम मजदूरों का अनपढ़ होना। अरे हम मजदूरों का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे को सब पूछते हैं शिबू, जबकि अनपढ़ों को दुत्कार दिया जाता है उनकी अपनी किस्मत पर रोने के लिए।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, इस दलित लाइन में यशवंत अकेला पढ़ा लिखा है, तभी तो वो यूनियन का नेता बन गया, जबकि हम और तुम यहां बैठे इधर उधर की बातें मनाकर समय काट रहे हैं। ये बात तो है ही। वैसे लीचू, तीसरा कारण क्या है?
0: अरे तीसरी बात तो ये है शिबू कि हमारे अंदर ऊपर उठने की आत्मशक्ति ही नहीं है।
1: हा?
0: अरे हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं।
1: अरे वाह, अरे लीचू तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया। अरे
0: अरे
1: कमाल है, तेरी बातें किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम थोड़ी हैं।
0: अरे अब इन बातों को छोड़ो भैया, मुझे तो मजदूरों के ऊपर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है शिवू जब यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी और आसमान में चील और गिद्ध उड़ेंगे। चील और गिद्ध?
1: चील और गिद्ध? क्या कह रहे हो लीचू भैया?

0: अरे कमाल है, ये रामू बामू अभी तक नहीं आए, जाने कहाँ रह गए?
1: हम हाजिर हैं ठाकुर साहब।
0: अरे कहाँ थे तुम दोनों?
2: आपके सेवक आपकी सेवा में हाजिर है सरकार।
3: हाँ सरकार, हुक्म करे।
0: अब दरवाजे पर खड़े रहने का ही इरादा है या अंदर न आने की कसम खाई है?
2: चल बाबू, ठाकुर साहब अपने पास बुला रहे हैं।
3: अरे हाँ, चल रामू।
2: सरकार,
0: और बताओ नई खबर क्या है?
3: ठाकुर साहब, आपके आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने यूनियन की सभाओं में जाना शुरू कर दिया है।
0: ये तो बहुत अच्छा किया।
2: सरकार,
0: अंदर का समाचार क्या है?
2: हुजूर, यूनियन हड़ताल पर आमादा है।
3: हाँ,
0: अच्छा
3: ठाकुर साहब, आपके पैर दबा दूं?
0: चल दबा दे।
2: हुजूर, रेडियो तो बंद कर दीजिए, इसकी कान फोड़ू आवाज, आपकी मधुर आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार।
0: तुम दोनों बहुत अच्छे हो।
2: मेहरबानी सरकार,
0: मैं अभी बंद करता हूँ।
3: धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात कहूँ, आपके पैर दबाने में, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद।

0: आनंद मिलता है। देखो ना कितना बलिष्ठ शरीर है आपका।
1: पुराना देसी घी खाया है रामू? जरा बाहर तो देख, आसपास कोई छिपा तो नहीं है?
2: अभी देखता हूँ सरकार, अगर कोई होगा तो हड्डी पसली तोड़कर सीधे अस्पताल पहुँचा लूंगा सरकार।
0: देखने गया हजूर, अभी आके बताता है।
2: कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। करा कौन हिम्मत करेगा, आपका रुआ भी काफी है सरकार।
0: सरकार
1: सुना है यूनियन की कोई गुप्त सभा होने वाली है?
0: हाँ सरकार, हड़ताल की तारीख तय करने और नोटिस जारी करने के लिए गांव के चौधरी के खेत में सभा होने जा रही है सरकार। लेकिन सरकार ये बात आपको कैसे पता चली?
2: हाँ सरकार,
1: तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ।
0: सरकार, हाँ मेरे सरकार, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। क्यों
2: ठीक कह रहा भाई तू।
1: मानता हूँ कि चापलूसी की प्रतियोगिता हो तो सोने का तमगा तुम दोनों को ही मिलेगा।
2: अरे सरकार की बात है।
1: तुम दोनों को अपना काम पता है ना?
2: पता है सरकार। बिल्कुल, हम दोनों यूनियन की गुप्त सभा में जाएंगे।
0: हाँ, और वहाँ की तमाम गोपनीय खबर आप तक पहुँचाएंगे।
1: शाबाश
0: सरकार। सरकार एक पैग और बनाऊ?
1: नहीं नहीं, मुझे नशा होने लगा है। तुम्हें पीनी हो तो अपने लिए बना लो।
2: तो सरकार हम ये बोतल लिए जाते हैं, थोड़ी देर साई के तट पर बैठेंगे, वही इसके साथ अपना मनोरंजन कर लेंगे सरकार।
1: बहुत बड़े उस्ताद हो तुम दोनों।
0: अरे हम क्या है सरकार, ना तो हम पित्ती है ना पित्ती का शोरबा, अगर कुछ है भी तो आपकी शराफत का एक जर्रा भर है।
2: छोटा सा जर्रा सरकार।
1: भाई मैं तुम दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम सामने वाले को खुश कर देते हो। तुम जैसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हो।
0: तो ठाकुर साहब बोतल ले जाए।
1: आ जा जा जा ले जाओ।
2: अरे सरकार जिंदाबाद।

0: अरे क्या बात है शिबू, इतना खांस क्यों रहा है?
1: अरे यशवंत नेता जी,
0: मुझे नेता कहकर हमारे इंसानी रिश्ते को ना तोड़ शिबू। अरे हम दोनों तो धर्म भाई हैं।
1: अरे यशवंत जी आप पढ़े
0: लिखे। ना ना ना शिबू ना, अभी बिल्कुल ना बोल। देख शायद तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कहे तो डॉक्टर या वैद्य के पास ले चल। अरे
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ
1: मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि आप पढ़े लिखे हैं और मजदूर यूनियन में आप पहले दलित प्रतिनिधि हैं।
0: हाँ
1: हम दलित मजदूरों को आपसे अपने उद्धार की बड़ी आस है। यशवंत बाबू,
0: हाँ शिबू,
1: जिस तरह अंबेडकर भगवान ने देश के दलितों की अगुवाई कर शोषण की दलदल से उबारा था,
0: शिबू
1: उसी तरह आप भी साइंस साइट पर काम करने वाले दलित मजदूरों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक देशभक्त नेता का यही सच्चा गुण होता है।
0: शिबू,
1: तो फिर मैं आपको नेताजी ना कहूं तो और क्या कहूं यशवंत बाबू?
0: अरे शिबू, थोड़े शब्दों में तूने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मुझे भगवान बनाने की कोशिश ना कर शिबू, इस कलयुग में इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते।

0: देख, मुझे इंसानों से अपने से अलग ना कर, मुझे अपने बराबर रहने दे मेरे भाई।
1: यशवंत बाबू, आपकी बातें, आपके विचार सरल और सच्ची इंसानियत की मिसाल हैं। आप जैसे इंसान पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है, खासकर दबे कुचले और उपेक्षित समाज को। दलित मजदूरों में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है।
0: अरे शिबू, मुझे सम्मान नहीं, तुम लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। देख, हड़ताल की ये जो बातें चल रही हैं ना, उस पर मुझे संदेह है।
1: संदेह? कैसा संदेह?
0: हड़ताल की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक हड़ताल का हमें मकसद नहीं मालूम है।
1: यशवंत बाबू, उस दिन बलबीर स्वामी ने कहा तो था, हम मजदूरों को परमानेंट करवाने के लिए हड़ताल होगी, लेकिन कभी किसी की छटनी नहीं होगी।
0: अरे शिबू, इस तरह पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं, हर बार या तो यूनियन के नेता बिक जाते हैं या फिर धन के अभाव में हड़ताल दम तोड़ देती है।
1: अरे यशवंत बाबू, आपने सुना नहीं था क्या, मजदूरों से चंदा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर मजदूर यूनियन के मुख्यालय से भी मदद ली जाएगी।
0: मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का चंदा तो मिल जाएगा यूनियन को शिबू, मगर इसी चंदे से बने यूनियन फंड से कोई मदद मिलेगी, इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती।
1: तो क्या यूनियन के स्थानीय नेताओं का दावा खोखला है? शास्त्री जी का सहायक झूठ बोल रहा है।
0: झूठ और दावों का सहारा नहीं लेंगे तो मजदूर बहकावे में कैसे आएंगे? बहकावे में आए बिना भला मजदूर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का चंदा देंगे? और अगर चंदा नहीं आएगा तो यूनियन के नेता गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे शिबू?
1: हड़ताल के पीछे यूनियन नेताओं के मौज मस्ती का षड्यंत्र।
0: हाँ शिबू, हाँ।
1: यशवंत बाबू, हाँ। आपको इसके खिलाफ मजदूरों को सचेत करना चाहिए।
0: अरे कोई फायदा नहीं होगा शिबू, कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जितने यूनियन के नेताओं के पास हैं, और मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है शिबू।
1: ठीक कहते हैं आप, मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?
0: अरे फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है।
1: यशवंत बाबू, थोड़े ही दिनों में मैं आपका स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गया हूं।
0: अब
1: मैं जानता हूं इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले आप पहले आदमी होंगे, और आपके हाथ में होगी तलवार, वो तलवार जिस पर लाचारी की जंग नहीं लगी होगी, बल्कि बल्कि
0: शिबू,
1: बल्कि विद्रोह की चमक होगी, चमक।
0: देख शिबू, भविष्य के गर्भ में क्या है इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
1: ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप।
0: अरे शिबू, ये क्या शिबू, बलगम के साथ खून? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है?
1: 5-7 बार हो चुका है।
0: अरे और तूने इस बात पर गौर नहीं किया?
1: अरे यशवंत बाबू, इसमें गौर करने वाली बात ही क्या है?
0: अनपढ़ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है, गंदगी में रहने के लिए विवश होने के कारण भी अनपढ़ गवार मजदूर अनजाने में खतरनाक बीमारियों को पालने लगता है। अरे शिबू, तुझे टीबी की बीमारी हो सकती है, टीबी की।
1: टीबी?
0: हाँ टीबी। देख, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। शिबू।
1: अरे यशवंत बाबू, ये तो खुशी की बात है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद।
0: शिबू,
1: जाति शोषण और अपमान भरी जिंदगी से मैं आप लोगों से पहले मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हो रही है ना आपको भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या

0: शिबू देख, तू तू पागलपन की बात ना कर, मेरी मान तो अभी जा डॉक्टर के पास। देख अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले, अब यह ठहर, मैं तेरे साथ चलता हूँ डॉक्टर के पास।
1: कोई जरूरत नहीं।
0: अरे अपने आप को संभाल शिबू, चल चल मेरे साथ।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा कर यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन पर बल दिया गया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा।

बहनों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही वह रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। इन्हीं नीतिगत पंक्तियों के साथ महिला सभा के सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का सस्नेह नमस्कार। बहनों, भारतीय इतिहास में झारखंड के क्रांतिकारी चिंतक आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नए सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात करने वाले जननायकों में से एक थे बिरसा मुंडा। झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। बहनों, बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में इधर उधर तिनके सा भटक रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि आदिवासी समाज को सामाजिक कुरूतियों के कोहरे ने नए ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। इसलिए बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण और यातना से मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रयास किए। सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज को अंधविश्वासों और ढकोसलों से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा का महत्व व स्वच्छता का संस्कार सिखाया। उनके इस प्रयास से जमींदार, जागीरदार, ब्रिटिश शासन बौखला गया और झाड़ फूंक करने वालों की दुकानदारी ठप हो गई। बहनों, आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्ति करने के लिए बिरसा मुंडा ने नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वनों की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा, उन्होंने राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित किया। चूंकि बिरसा मुंडा ने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। बहनों, ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह की यातना और धीमा जहर दिया, जिसके चलते बिरसा मुंडा 9 जून सन 1900 को चिर निद्रा में लीन हो गए। बहनों, पराक्रम और सामाजिक जागरण के अग्रदूत बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बहनों, जीना वास्तव में उन्हीं का जीना है जो दूसरों के सद्मार्ग और खुशी के लिए अपनी खुशी की चिंता किए बिना अपना सब कुछ वार दे।

0: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। अभी आपने मुकेश के स्वर में अनाड़ी फिल्म से ये गीत सुना। गीतकार शैलेंद्र की रचना को संगीत में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। बहनों, बदलते लाइफस्टाइल और व्यस्त होती जिंदगी में लोग भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन रिश्तों को सही तरीके से ना निभा पाने, भावनात्मक रूप से अलगाव महसूस करने या खुद से नाराजगी के कारण भी लोगों के मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डालने लगता है। ऐसी स्थिति में इंसान कई बार परिवार के साथ रहकर भी अकेला महसूस करता है। ऐसे अकेलेपन की स्थिति में महिलाएं आसानी से घिर जाती हैं। बहनों, शहरी महिलाओं में अकेलापन आज एक गंभीर मानसिक और सामाजिक चुनौती बन गया है। इसके प्रमुख कारण है एकल परिवार का चलन। इसके चलते बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं पर आ जाती हैं, जिससे वे सामाजिक जीवन से कट जाती हैं। बहनों, घर हो और बाहर हो, ऑफिस या नौकरी, दोनों जगह तालमेल बनाए रखने की कोशिश में उनके पास स्वयं के लिए समय ही नहीं मिलता। बड़े शहरों में लोग अक्सर अपने फ्लैट्स तक ही सीमित रहते हैं, जिससे जान पहचान का दायरा सीमित और आत्मीय बातचीत का मौका ही नहीं मिलता। वे भावनात्मक रूप से स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगती हैं। इन सब समस्याओं का शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक अकेलापन एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। फलस्वरूप नींद न आना, उच्च रक्तचाप और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। बहनों, अकेलेपन की समस्या से निपटने का उपाय यही है कि अपने आस पड़ोस की महिलाओं, अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों से नियमित संपर्क बनाए रखें। अपनी रुचियों को समय दें, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग जैसी हॉबी को अपनाएं और अकेलेपन में इनको अपना साथी बनाएं। मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान करें। अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने या मूवी देखने, पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं या शॉपिंग पर जाएं। पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों का आप हिस्सा भी बन सकती हैं। बहनों, ज्यादा परेशानी होने पर आप काउंसलर की मदद ले सकती हैं। तो ये तो बहनों हमने आपसे बातचीत की शहरी महिलाओं में अकेलेपन की समस्या इस विषय पर, और अब आपसे पुनः मिलते हैं हम इस अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। बहनों, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं ने अपनी लगन, मेहनत, जोश और जज्बे से स्वयं को साबित कर अपनी जगह स्वयं बनाई है। महिलाओं के बढ़ते कदमों को शिखर पर पहुंचते देख लोगों ने महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदला है, और आज की वार्ता का विषय भी ऐसा ही है। महिलाओं के प्रति बदलती सोच, और वार्ताकार हैं नैन्सी विश्वकर्मा।
3: नमस्कार, आज हम महिलाओं के प्रति बदलती सोच पर चर्चा करेंगे। आजकल महिलाओं का दायरा केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। भागती दौड़ती जिंदगी और करियर की आपाधापी में यह सवाल और भी अहम हो गया है कि विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए। अगर बात की जाए लड़कों की, तो उन्हें पहले अपने करियर की चिंता होती है, अपना करियर बनाकर वे विवाह

लेकिन लड़कियों के लिए करियर और समय पर शादी का सवाल और भी अहम हो जाता है। शानदार करियर बनाने की तमन्ना हर किसी की हो सकती है, लेकिन परिवार को पारंपरिक रूप से एक महिला की ही जिम्मेदारी माना जाता रहा है। वैसे भी भारतीय परिवेश में कामकाजी महिलाओं की जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। पुरुष प्रधान समाज की अपनी मानसिकता है, तो वहीं महिलाओं को लेकर बुनियादी सामाजिक रूढ़िवादी सोच भी एक मुद्दा है। अगर कोई कामकाजी महिला नौकरी में सुबह 8 बजे घर से निकलती है और घर 2 बजे की बजाय 4 बजे पहुंचती है, तो घर के लोग आग बबूला हो जाते हैं। समाज को इस सोच को बदलना होगा। बीते सालों में वक्त के साथ साथ बदलते जमाने में बहुत बदलाव आया है। पुरानी धकियानूची सोच को त्याग समाज ने नारी को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने सपने को पूरा करने की आज़ादी दे दी है। पहले महिलाओं का दायरा सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित था, लेकिन आज यह दायरा काफी बढ़ गया है। यह बात सच है कि आज हर स्त्री पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। आपको शायद अजीब लगे यह कि यह अधूरा सत्य है। आज के युग में जब महिलाएं पुरुषों के हर मायने में बराबरी कर रही हैं, जैसे स्त्रियों ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य क्षेत्र में संभाला है, वैसे ही पुरुष भी घर परिवार की छोटी छोटी जिम्मेदारी में भी अपनी भागीदारी निभाएं। वे महिलाओं को उनकी मशीनी जिंदगी से बाहर निकालें, तभी एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है। हमारे देश में शिक्षा के मामले में महिलाओं ने पुरुषों की लगभग बराबरी कर ली है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के कारण वो आर्थिक जगत में अपनी सही जगह नहीं बना पाई हैं। यह हमारे समाज की वास्तविकता है कि बेशक महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं के कारण उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी ही होती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पुरुषों की सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन आप इसे पुरुषों का बड़ापन ना समझें। वास्तव में सोच बदलना पुरुषों की मजबूरी बनती जा रही है। आज के भौतिकता भरे युग में और महंगाई के कारण एक आदमी की आय से परिवार को चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कामकाजी महिलाएं समाज की जरूरत बनती जा रही हैं। कामकाजी महिलाएं दोहरी मार सह रही हैं। एक तरफ उन्हें परिवार में आर्थिक सहयोग के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें घर में भी पूरी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। आज भी पुरुषों के लिए घर का काम करना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जाता है। घर की जिम्मेदारियां निभाने में कामकाजी महिलाओं को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए, तभी वो देश, समाज और परिवार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। आज़ादी तक महिलाएं घर की चार दीवारों तक ही सीमित थी, हालांकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज़ादी के बाद फिर वो अपने चौके चूल्हे की दुनिया में लौट गईं। उस समय केवल अमीर घरानों की ही कुछ महिलाएं केवल आर्थिक जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थीं, लेकिन संविधान से मिले अधिकारों के कारण महिलाओं की स्थिति में बड़ी तेजी से सुधार आया है और ये लगातार चल रहा है। महिलाओं ने शिक्षा, शास्त्र, बैंकिंग, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। अध्यापन के क्षेत्र में तो उन्होंने पुरुषों को बहुत पीछे धकेल दिया है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ दलित और पिछड़े सरकारी क्षेत्र में अपना हिस्सा पाने के लिए आरक्षण के मोहताज हो रहे हैं, वहीं महिलाएं कुछ जगहों को छोड़कर बिना किसी आरक्षण के ही पुरुषों के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी महिलाएं अपना हिस्सा प्राप्त कर रही हैं और धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के सामने चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन सैकड़ों चुनौतियों के बाद भी वो अपने हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं के प्रति

0: सोच में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो समाज महिलाओं के प्रति अपनी सोच नहीं बदल पाएगा वो वक्त के साथ नहीं चल सकता। समाज को आगे ले जाने के लिए महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलना जरूरी हो गया है। महिलाओं का पिछड़ना पूरे देश, समाज, धर्म का पिछड़ना बन जाएगा। शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। शिक्षित बेटियां अब परिवारों पर बोझ नहीं बल्कि उनका संबल बन रही हैं। आज की महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। नौकरियां और व्यवसायों में उनकी बढ़ती भागीदारी ने पुरुष पर अपनी निर्भरता को खत्म किया है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायतों तक में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। आधुनिक नारी पुरातनता की कैंचुली को उतार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई दिशा के आयामों को मोड़ रही है। नारी जीवन की विभिन्न दिशाओं और प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति मिली है, उसका चहुमुखी विकास हुआ है। हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के युगीन परिवर्तन ने और नारी को सौंदर्य और प्रेम की वादियों से बाहर खींच निकाला है और यथार्थ के कठोर धरातल पर भविष्य निर्माण के लिए खड़ा कर दिया है। पुरुष वर्चस्ववादी सोच को दर्द किनार कर महिलाओं ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी कुशलता, योग्यता, परायणता, मृदुभाषिता, स्नेहशीलता का परिचय दिया है। आज गांव हो या शहर, सोच बदल रही है। माता पिता बेटी को बोझ नहीं लक्ष्मी मानकर पढ़ा रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बड़ी है, करियर पहली प्राथमिकता बना है। घर के कामों में पति पत्नी की बराबरी हिस्सेदारी को सही माना जा रहा है। लड़का लड़की एक समान अब नारा नहीं हकीकत बन रहा है। राजनीति से लेकर अंतरिक्ष तक, खेल से लेकर सेना तक, हर क्षेत्र में महिलाएं झंडे गाड़ रही हैं। समाज की सोच बदलना एक दिन का काम नहीं, पर यह तय है कि गाड़ी सही दिशा में चल रही है। जरूरत है कि हम बेटों को भी सिखाएं कि सम्मान देना और घर का काम करना कमजोरी नहीं है। जब हर घर में सोच बदलेगी तभी पूरा समाज बदलेगा। जैसा कहा गया है, नारी अब अबला नहीं सबला है। यही बदलते भारत की पहचान है। धन्यवाद।
1: महिलाओं के प्रति बदलती सोच, अभी आपने ये वार्ता सुनी वार्ताकार नैंसी विश्वकर्मा से। और बहनों, अब चलते हैं संगीत के सफर पर और सुनते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में जीने की राह फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद अब बात कर लेते हैं खाने की। बहनों, इन दिनों कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है जो शरीर को ठंडक प्रदान करे, साथ ही सेहतमंद और सुपाच्य हो। तो चलिए आज बताते हैं ऐसे ही नाश्ते की विधि, जौ या ओट्स की महेरी। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 कटोरी जौ का दलिया या ओट्स, 1 कटोरी मखाने घी में रोस्ट किए हुए, 1 कटोरी भुंजे चने छिलके उतरे हुए, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा खीरा आधा कटोरी, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मैंने सुबह के नाश्ते के लिए इसको रात में ही बना के रखना है। बनाने की विधि इस प्रकार है। बहनों, 1 कटोरी ओट्स को पकाने के लिए 4 कटोरी पानी एक भगोनी या कड़ाही में लें और इसे धीमी मध्यम आंच पर जौ का दलिया या ओट्स डालकर लगातार चलाते हुए पकाएं। बहनों, ये 5 से 7 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा और इसको एक किसी बर्तन में निकालकर रख दें और पतले कपड़े से रात भर के लिए ढककर छोड़ दें। बहनों, ये रात भर में फर्मेंटेड हो जाएगा और सुबह इसमें ताजा दही मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। बहनों, सुबह नाश्ता करते समय ओट्स की महेरी में नमक, थोड़े से रोस्ट मखाने, भुंजे चने और खीरा बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो खाने के पहले इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है प्रोटीन से भरपूर, स्वाद और सेहतमंद जौ या ओट्स की मखाना महेरी। ये शानदार नाश्ता सभी को पसंद आएगा, पेट के साथ साथ ये पूरे शरीर को भी ठंडक प्रदान करेगा। बहनों, गर्मियों में स्वास्थ्य और सेहत के लिए खान पान का ध्यान रखना तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ अत्यधिक गर्मी और लू से बचाव भी जरूरी है। बहनों, इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी रखना जरूरी है। चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना, शरीर का अत्यधिक गर्म होना और निर्जलीकरण, बेहोशी, ये लू के संकेत हैं। तो बहनों, लू से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तरल पदार्थों में नारियल पानी, मट्ठा, नींबू पानी, शिकंजी, आम का पना, सतुआ, बेल का शरबत, लस्सी, ठंडाई जैसे शीतलता प्रदाय करने वाले पारंपरिक पेय पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखने वाले फल, सब्जी जैसे तरबूज

खरबूज, लीची, खिन्नी, लौकी, तोरई, टमाटर का सेवन करें। बहनों, जब तक जरूरी काम ना हो तब तक दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर धूप में जाने से बचें। शिशु और बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, खुले में काम करने वाले श्रमिकों के साथ साथ हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सावधानी रखना जरूरी है। बहनों, घर से बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती पूरे ढके हुए कपड़े पहनें और सिर को अंगोछा या दुपट्टा से ढकें, धूप का चश्मा पहनें। और बहनों, अब चलते चलते चलिए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना रफी लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म अनुराग से। गीतकार आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और बहनों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते इतना जरूर कहूंगी कि यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती। माता पिता की छत्र छाया में रहिए, उनका ध्यान रहिए, आप सभी सुरक्षित रहिए। और अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

साथी अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत भाईराम गपोजी रणसोर और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राधा कुलकर्णी के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जन्नत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी के की। गीतकार थे सैयद कादरी और संगीत था प्रीतम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए कहा कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के कल्याण से ईर्ष्या के बिना नेक काम करता है, और यही भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की सबसे बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

वहीं लोक भवन में भी आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा और देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि अधोसंरचना विकास और गो संवर्धन में लगाई जाएगी। वहीं कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर प्रति गठान 50 पैसे किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना की लागत में 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह अब करीब 10,000 करोड़ रुपए की हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तबादलों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज प्रतिनिधि एक साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श करेंगे और दिन भर कई दौर की बैठकें होंगी। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस से मुफ्त परिवहन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश की शौर्य दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहणियां तक शामिल हैं। ये दल घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याओं को पुलिस के पहुंचने से पहले ही सामुदायिक स्तर पर सुलझा देता है। सरकार ने इस कार्यक्रम को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक मानसून इंदौर और जबलपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि भिंड, दतिया और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों में 12 से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर ने काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता जिले के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नीमच एसडीएम और तहसीलदार ने आज ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। और खंडवा में समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा और डॉ शोभा पेटड़कर 11 जून को खंडवा आएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को

0: मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7 करोड़ 50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों

0: ₹70 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुति ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान

0: बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहाँ पहुँचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहा सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम और ये साथी हैं उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश मूड़त, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म बड़े दिल वाला, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के। गीतकार हैं मजरूह और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है पंजाब रूपट से हरदेव मीका बलविंदर नीरक जैतेंग बिरक मीका बिरक भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार जावेंद्र कुमार वर्मा और नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले आरती जोनले। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है राजा रानी, इस फिल्म का यह प्यारा सा गीत जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। फिल्म है रफू चक्कर, और इसका ये प्यारा सा गीत गाया है शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिकेश, साक्षी, मनन, तानिया। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा।

सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी, मीनूराज श्रीमाली, और ये जो साथी हैं हमारे ये हैं अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पराया धन इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आरडी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और सिंहपुर से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है फिल्म अनुरोध का ये गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया और राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार आशा भोसले की और फिल्म है जवानी दीवानी।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब युवा किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रूपये मिलेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श दिया जाएगा। और प्रदेश की शौर्या दल आज देश में सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। वर्ष 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहिणियां तक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन से कौन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33, 6:30, 8:35 और रात 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनेंगे एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास ये कार्यक्रम।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन संगीता गोस्वामी से।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभागार में युवा साथी सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम युभवाणी।

0: साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम युवाणी में, जिसमें आज मैं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र लीला अहरवार और मेरे साथ हैं
1: प्रिंसी राजपूत।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: साथियों, जैसा कि आपको पता है, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारी चर्चाओं के साथ। तो आज की हमारी पहली चर्चा है, जिसका विषय है बिरसा मुंडा शहीद दिवस।
0: साथियों, बिरसा मुंडा शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
1: साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। साथियों, वे बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और समाज के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार और शोषण को देखा तथा उसके विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया।
0: बिल्कुल, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
1: उनके नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन उलगुलान महाविद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और आदिवासी समाज में नई चेतना का संचार किया।
0: बिल्कुल प्रिंसी, अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया। 9 जून सन 1900 को जेल में उनका निधन हो गया। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। आज भी उन्हें धरती आबा अर्थात धरती के पिता के रूप में सम्मान दिया जाता है।
1: साथियों, बिरसा मुंडा शहीद दिवस हमें उनके साहस, त्याग और देशभक्ति की याद दिलाता है। उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के

0: लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।
1: साथियों, हमें उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। बिरसा मुंडा का नाम भारतीय इतिहास में सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे बिरसा मुंडा शहीद दिवस पर एक छोटी सी जानकारी, और कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
5: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
1: पुनः स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में, और चलते हैं एक और चर्चा की ओर, जिसका विषय है जलवायु परिवर्तन और युवाओं की भूमिका। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
6: बिल्कुल, इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और बाढ़, सूखा तथा अत्यधिक गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार देखने को मिल रही हैं।
1: बिल्कुल प्रिंसी, और इसका कारण मानव गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस जैसी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिन जैसी गैसें।
6: बिल्कुल, युवाओं की भूमिका जलवायु परिवर्तन से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का सबसे ऊर्जा और जागरूक वर्ग होते हैं।
1: बिल्कुल, वे अपने व्यवहार और विचारों से सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, प्लास्टिक का कम प्रयोग और वृक्षारोपण जैसे छोटे छोटे कदम पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
6: इसके अतिरिक्त युवा सोशल मीडिया और अन्य मंचों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं।
1: वे स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में पर्यावरण संबंधी अभियानों का आयोजन कर सकते हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में युवा नई पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
6: साथियों, जलवायु परिवर्तन केवल सरकारों या वैज्ञानिक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवा अपनी सक्रिय भागीदारी, जागरूकता और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जलवायु परिवर्तन और युवाओं की भूमिका पर।
1: और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलते हैं मनोरंजन की तरफ, और सुनवाते हैं आपको फिल्म धड़कन से ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अलका याग्निक की
1: और गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं स्वप्न नील तिवारी से ये काव्य पाठ।
2: पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, रुधिर रंग की भाषाएं मन को विचलित ए पवन, रंग रूप की पहचान श्वेत अंबर के छाओ में, गर्जन ध्वनि के प्रमार जाने किस दिशा की ओर, नभ की रोशनी में।

पुण्य आत्माएं, जाने किस दिशा की ओर नभ की रोशनी, मैं पुण्य आत्माएं, पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, मानवीय सरोकार की जननी समय की रेखाओं का चित्रण, मानवीय सरोकार की जननी समय की रेखाओं का चित्रण, चंद ललाट भूमि का दर्पण अगिन शिलाओं का मिश्रण, समेटता है कई इतिहास पहुँचे हैं आज अदालती फरमान, जनहित में बदलते हुए विनाश, ए पवन धूरी से धूरी अक्सर बनती संघर्ष की चारों भुजाएं, जनहित में बदलते हुए विनाश, ए पवन धूरी से धूरी अक्सर बनती संघर्ष की चारों भुजाएं, पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, नन्हे बाल की अभिलाषा मन, नन्हे बाल की अभिलाषा मन, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, नन्हे बाल की अभिलाषा मन, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, चंचल मन का नटखट बालक करता भय घर का मापन, चंचल मन का नटखट बालक करता भय घर का मापन, कहीं किवार का ओट लिए चलता रोटा फिर हट करता, आखिर थाक हार जब आंखें हैं भरता, चलता रोटा फिर हट करता, आखिर थक हार जब आंखें हैं भरता, सफेद चितवन में मन सहेजे, सफेद चितवन में मन सहेजे, ढूंढता है भय माँ का आंचल, सफेद चितवन में मन सहेजे, ढूंढता है भय माँ का आंचल, नन्हे बाल की अभिलाषा मन, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, शब्दों का पहला चरण मोह ललाट की टूटी फूटी बेला, शब्दों का पहला चरण मोह ललाट की टूटी फूटी बेला, क्षण क्षण का प्रतिफल गाता गगन और सहचर प्राणी, क्षण क्षण का प्रतिफल गाता गगन और सहचर प्राणी, हर ठोकर के बाद फिर खड़ा होना, जाने पहचाने स्वर का खोना, फिर चलना उसके संग, आज शीतल निशा के पल में खोया मन, आज शीतल निशा के पल में खोया मन, ईश्वर के प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, ईश्वर के प्रतिरूप धरा पर माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन, आजादी के वो गुमनाम शख्स, आजादी के वो गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते कुछ रक्षक, आजादी के गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते कुछ रक्षक, स्वर्ण पत्रक पर जिनके नहीं रहे नाम, संघर्ष जीवन जिनका अमर बलिदान, स्वर्ण पत्रक पर जिनके नहीं रहे नाम, संघर्ष जीवन जिनका अमर बलिदान, परिवार से हरदम दूरी हालातों की ऐसी रही मजबूरी, भेंट चढ़ गए बचपन वो बचपन से लेकर जवानी, शिलालेख से कुछ पत्थर गए हैं झटक, आजादी के वो गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं कुछ रक्षक, वो बचपन से लेकर जवानी शिलालेख से कुछ पत्थर गए हैं झटक, आजादी के वो गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं कुछ रक्षक, भीषण युद्ध अंतिम रैन कहाँ, भीषण युद्ध अंतिम रैन कहाँ, मन के जीते संतोष वहाँ, भीषण युद्ध अंतिम रैन कहाँ, मन के जीते संतोष वहाँ, कारागार में बेरियों के बीच अंधेरी रात को समेटती यह चार दीवारी, यादों के सहारे जब सांसें हैं जारी, भीषण युद्ध अंतिम रैन कहाँ, मन के जीते संतोष वहाँ, कारागार में बेरियों के बीच अंधेरी रात को समेटती यह चार दीवारी, यादों के सहारे जब सांसें हैं जारी, सूरज की किरणों में नई उम्मीद के संग वह लड़ता है फिर वह लड़ता है, अभिमन्यु के चारों ओर भक्षक, आजादी के वो गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं कुछ रक्षक, आजादी के वो गुमनाम शख्स अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं कुछ रक्षक, भीषण युद्ध में अंतिम रैन कहाँ, मन के जीते संतोष वहाँ, कारागार में बेरियों के बीच अंधेरी रात को समेटती यह चार दीवारी, यादों के सहारे जब सांसें हैं जा

0: सूरज की किरणों में नई उम्मीद के संग वह लड़ता है, फिर वह लड़ता है। अभिमन्यु के चारों ओर भक्षक, आजादी के वो गुमनाम शख्स, अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं कुछ रक्षक, अक्सर पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं वो रक्षक। रुधिर रंग की भाषाएं मन को विचलिते पवन, रंग रूप की पहचान श्वेत अंबर के छाओं में, गर्जन ध्वनि के प्रमाण जाने किस दिशा की ओर, नभ की रोशनी में पुण्य आत्माएं, पूरब से पश्चिम की दूरी समान बोलती गाती प्रतिमाएं, मानवीय सरोकार की जननी, समय की रेखाओं का चित्रण, चंद ललाट भूमि का दर्पण, अगिन तिलाओं का मिश्रण, समेटता है कई इतिहास, पहुंचे हैं आज अदालती फरमान, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर, माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन। चंचल मत का नटखट बालक, करता भय घर का मापन, कहीं किवार का ओट लिए चलता रोटा फिर हट करता, आखिर थक हार जब आंखें ही भरता, सफेद चितवन में मन सहेजे ढूंढता है भय माँ का आंचल, नन्हे बाल की अभिलाषा मन, ईश्वर का प्रतिरूप धरा पर, माँ के प्यार बिन अछूते प्रत्येक धन। चित मन की रजनी में संघर्ष पथ पर जो अकेला है, धैर्य भरा जिसके अंतर मन में होता नित्य सवेरा है। चित मन की रजनी में संघर्ष पथ पर जो अकेला है, धैर्य भरा जिसके अंतर मन में होता नित्य सवेरा है। जन मृत्यु का बनन भेद, स्वांग रचाए किरण तेज, या जग महिमा का भरण पोष, रही युद्ध भीषण का उद्घोष। सीधे रेखा के पुंज प्रकाश से पीयूष रस में जो ढलता है, धैर्य भरा जिसके अंतर मन में होता नित्य सवेरा है। प्रतिपल गाता नवचर में अघात जानकर भी हंसने में, या कांटों की सैया पर खरी भीष्म की अग्नि में, रहे ज्वलंत भाव भंगिमा में मर्दन करते गर्जन में। प्रतिपल गाता नवचर में अघात जानकर भी हंसने में, या कांटों की सैया पर खरी भीष्म की अग्नि में, रहे ज्वलंत भाव भंगिमा में, या मर्दन करते गर्जन में। नदिया का हट स्वभाव आखिर उसे समुन्दर तक ले पहुंचा है, धैर्य भरा जिसके अंतर मन में होता नित्य सवेरा है। पूंजी निवेश के साधन में, या ठहराव के गागर सागर भरने में, मन भर की जीत की अभिलाषा में, रहे ध्वनि जो अर्जुन की गांधीर प्रत्यंचा में, रहे ध्वनि जो अर्जुन की गांधीव प्रत्यंचा में, कृष्ण सा उपदेश जब मन में जीवन का सार बनता है, धैर्य भरा जिसके अंतर मन में होता नित्य सवेरा है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे स्वप्नलील तिवारी से ये प्यारा सा काव्य पाठ।
2: और आइए साथियों, चलते हैं कार्यक्रम में आगे और एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, और सुनते हैं फिल्म सनमरे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार हैं मनोज यादव और संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने।

0: चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
0: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
0: अरे हर गोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो मांझी के पास जा पहुंचा।
1: मांझी, अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा मांझी, अब पाए लागू।
0: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: क्या हुआ?
1: बड़ी बहुरिया।
0: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो,
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोबिंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोबिंद भाई, तुम
1: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संबधिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: ज्वाइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, एस्पिरेशन एंड द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ट्राइबल कम्युनिटीज मूव फॉरवर्ड विथ होप, डिग्निटी एंड डिटर्मिनेशन। सेलिब्रेटिंग जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry

0: भूख सी बेहाल, थकान सी चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें?

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी इस कानो प्रसारण अभी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा, जो बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के में आज कलाकार हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: कार्यक्रम के आरंभ में आप कृष्ण गोपाल मिश्रा से सुन रहे थे ये देवगीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर BR श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
5: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा के स्वर में ये बधाई।

0: अभी आप सुन रहे थे ये बधाई स्वर कृष्ण गोपाल मिश्रा का था।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये गारी कृष्ण गोपाल मिश्रा के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गारी स्वर कृष्ण गोपाल मिश्रा का था।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए अब सुनते हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा से ये चेतावनी।

0: अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी स्वर कृष्ण गोपाल मिश्रा का था।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को

0: सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए ब्रज गोपाल मिश्रा से सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा से ये चित्रकूट दर्शन।
3: और चित्रकूट

0: अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, स्वर कृष्ण गोपाल मिश्रा का था।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लग

अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक धारा। इसमें आज कलाकार थे कृष्ण गोपाल मिश्रा। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गुमशुदा सूचना। नाम नीलम देवी, उम्र 28 वर्ष, पति का नाम शिव पूजन, ग्राम भगवानपुरा, पिता का नाम सोबरन सिंह, निवासी ग्राम चांदनपुरा, थाना रामपुरा, जिला जालौन से। इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है, आंख नाक कान, औसत कद लगभग 5 फीट 2 इंच, पहनावे में लाल रंग का सलवार सूट पहने हैं। ग्राम भगवानपुरा, थाना माधोगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से 9/5/1926 को समय करीब सुबह 9 बजे अपने घर से कहीं चली गई। इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो अवश्य संपर्क करें। संपर्क का मोबाइल नंबर है 8707774939, यानी 8707774939। इसके अलावा आप विवेचक जितेंद्र सिंह, थाना रामपुरा, जनपद जालौन के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। थाना अध्यक्ष रामपुरा, जनपद जालौन के मोबाइल नंबर 9454403603, यानी 9454403603 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी माधोगढ़, जनपद जालौन के मोबाइल नंबर 9454401430, यानी 9454401430 पर आप संपर्क करें। गुमशुदा की एक और सूचना है। इनका नाम सीमा है, उम्र 27 वर्ष, पति का नाम नीरज कुमार, निवासी ग्राम महमूद नगर, थाना कदौरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। इनका हुलिया लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गोरा, आंख नाक कान कद औसत है। इन्होंने हरे रंग की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पैरों में काले कलर की सैंडल पहनी है। ग्राम महमूद नगर, थाना कदौरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से 30/5/2026 को सुबह 9 बजे घर से कदौरा के लिए चली गई। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 7822949084, यानी 7822949084। दूसरा मोबाइल नंबर है 9794070148, यानी 9794070148। आप इनके हल्का इंचार्ज SI श्री सत्यनारायण सिंह के मोबाइल 89240966673, यानी 8924096673। थाना अध्यक्ष कदौरा के मोबाइल नंबर 9454403594, यानी 9454403594 पर संपर्क करें, या क्षेत्राधिकारी कालपी के मोबाइल नंबर 9454401429, यानी 9454401429 पर संपर्क करें। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नई योजना के लिए राज्यों को 95,692 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी। और इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का पहला दिन, 21 देशों के प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया और कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति अमीर के व्यक्तिगत ध्यान के लिए भी आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रूपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ये मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण में सुचारू परिवर्तन के लिए है। ये नया कानून अगले महीने की पहली तारीख से पूरे देश में लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है और किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पहला दिन रहा। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें शिरकत की। आज दिनभर कई दौर की बैठकें हुई जिनमें प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर गहन विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन 13 जून तक चलेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें करीब 13,800 करोड़ रूपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत के लिए 13,565 करोड़ रूपये से अधिक की मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
2: विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संचालनों के लिए 235 करोड़ की योजना के निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की जिन्हें फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा।
0: मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि मंडी शुल्क से मिलने वाली 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों

0: की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया,
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया,
3: लोगों पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है, मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक हो रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा कर इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में श्री प्रधान ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को लाभ मिल चुका है। योजना की पहुंच और बढ़ाने के लिए पहली जून से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा, जिसके तहत पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000 रूपये तक का आसान कर्ज और डिजिटल लेन देन की सुविधा दी जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ मानसून के 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। ट्राई सीरीज के पहले वनडे में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। डांबुला में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ए की टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के प्रभावी क्रियान्वयन में शहडोल जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। श्रम विभाग और आयुष विभाग द्वारा आज धार औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक दिवसीय योग शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर में मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कटनी में बारिश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। राजगढ़ में आज से 16 जून तक विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों और आईटीआई में रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में मृगज्ञानी मध्य प्रदेश प्रदर्शनी 2026 में बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए एक विशेष चौपाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा के सभी विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित ईवीएम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने आज नगर परिषद मेघनगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर जल गुणवत्ता की जानकारी ली और मंदसौर के गरोट तहसील के ग्राम

लारसी में करीब 5 करोड़ रुपए की 6.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही गुना में 15 जून से 19 जून तक ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर भर्ती के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घरनी।

0: वाली सबई बहनन खां उर्मिला बहन की राम राम। देखो टेम भाव और हम अपन को पसंदीदा कार्यक्रम लेके आ गए और आज हम लाए हैं बहुत सारी जानकारियां और संगे संगे अपन को जो पसंदीदा प्रोग्राम है लोकमंजरी। तो सबसे पहले बात हो जाए जानकारी की। बहनों मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटबे से फैलबे वालो एक गंभीर रोग है। इसे बचाव के लाने मच्छरन के प्रजनन का रोकबो और उनके काटबे से बचबो सबसे प्रभावी उपाय है। घर के आसपास साफ सफाई रखें ताकि मच्छर ना पनपे। इसके अलावा घर के अंदर भी साफ सफाई को विशेष ध्यान रखने हैं। कूलर को पानी 8-10 दिन में बदलें। बासे और बदबूदार पानी में मच्छर ज्यादा पनपते हैं। घर के आसपास भी पानी जमा न होने दें। और रात में सोत समय हमेशा कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी को प्रयोग करें। शरीर के खुले हिस्सन में मच्छर रोधी क्रीम लगाएं। पूरी बाजू के कपड़ा पहने। मच्छरन खा मारबे के लाने घर के कोनन में और अंधेरी जगह जहां पे सूर्य को प्रकाश नहीं पड़ते है उनमें नियमित रूप से कीटनाशकन को छिड़काव करें ताकि जो कीड़ा मकोड़ा है या मच्छर है वे उतरे न पनपे। घर के खिड़की दरवाजन में पतली जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर न आ पाए। कहो जाते हैं सावधानी ही बचाव है। ऐसे पहले ही से सावधानी बरतें ताकि मच्छरन से बचो जा सके और मलेरिया से भी बचाव हो सके। इके बाद भी यदि मलेरिया के लक्षण जैसे ठंड लगबो बुखार आबो हाथ पांव और सिर में दर्द होए तो तुरंत चिकित्सक की सलाह ले और जिसे अपन अपने का स्वस्थ रख पे हो। और अब मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: और बहनों अब कछु बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 से शुरू करो गो एक राष्ट्रीय अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ई योजना को मुख्य उद्देश्य बिटियन की सुरक्षा सुनिश्चित करबो, लिंगानुपात में सुधार करबो और बिटियन खां शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्त बनाबो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत तीन प्रमुख मंत्रालय जिनमें पहलो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिखा शिक्षा मंत्रालय भी कहो जाते हैं द्वारा मिलके कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगावे के लाने लिंग आधारित चयन प्रक्रिया को उन्मूलन और बिटियन खां बिटियन को अस्तित्व सुनिश्चित करबे के लाने बिटियन की शिक्षा और लैंगिक समानता के द्वारा बिटियन खां शोषण से बचावे के प्रयास करबे के लाने जागरूक करो जाते हैं। बिटियन की शिक्षा और भागीदारी खां प्रोत्साहित करके उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनावे को प्रयास भी करो जाते हैं। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात

0: बाद में सुधार भव है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बिटियन के सुरक्षित भविष्य के लाने मताई बाप अपनी बिटियान की पढ़ाई और बचत करवे में सक्षम भय है। स्कूलन में बिटियन के नामांकन दर में वृद्धि भई है और उच्च शिक्षा में बिटियन की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने पिछले कछु सालन में एक बड़े जन आंदोलन को रूप भी ले लो है, जिको उद्देश्य बिटियन का केवल बचाबो या पढ़ाबो नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व करबे के लाने सक्षम बनाबो है। जरूरत है हमें अपनी मानसिकता बदलबे की ताकि अपनी बिटियां आगे बढ़ सके और पढ़ सके। और अब मिला थे एक अंतराल के बाद।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान

0: नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बहनों, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में तेज धूप और लपट से बचबे के लाने शरीर का ठंडो रखबो सबसे जरूरी है। इके लाने जरूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ढीले सूती कपड़ा पहने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लपट से बचबे के लाने दोपहरी में धूप में निकलबे से बचे। यदि बहुत ही जरूरी हो तभी धूप में निकले और उके लाने पूरे इंतजाम भी कर लें। गर्मियों में स्वस्थ रहबे के लाने भरपूर पानी पिए, प्यास ना भी लगी हुए तो भी दिन भर में कम से कम 10-15 ग्लास पानी जरूर पीने हैं। शरीर से इन दिनन पसीना निकलत है बहुत ही ज्यादा और ई के संगे संगे पसीना के संगे संगे अपने शरीर के जो खनिज तत्व हैं वे भी बाहर निकलत हैं। ई कमी का पूरी करबे के लाने नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, आम को पन्हा, बेल को शरबत इत्यादि पेय पदार्थों को सेवन जरूर करने हैं और हमारे जो पारंपरिक खाद्य हैं जैसे सतुआ भाव, बिरचुन भाव जे भी लेने हैं काहे कि जे ठंडे होते हैं, हमारे शरीर का ठंडो रखते हैं। भोजन हल्को और सुपाच्य हो इको ध्यान रखें। ज्यादा तलो भुनो और मसाले वालों खाना खाबे से बचें। डिब्बा बंद खाना खाबे से बचें कैसे जो पेट और पाचन के लाने नुकसान हो पहुंचाऊ थे। हल्के और ताजे फल अपने आहार में शामिल करें। डंगरा है, कलिंदा है, खीरा है, आम है इत्यादि मौसमी फलन को सेवन जरूर करें। इनको उपयोग करवे से शरीर में पानी को और खनिज पदार्थन को संतुलन बनो रहा थे। धूप से बचबे के लाने हल्के रंग के कपड़ा पहने, पूरी बाजू के और ढीले सूती कपड़ा पहने। घर से बाहर निकलत समय मुड़ ढकबे के लाने गमछा, टोपी या छतरी को उपयोग कर सकते हैं। घर से खाली पेट ना निकले, धूप से आके तुरंत ठंडो पानी ना पिए, बेर बेर ठंडी से गर्म जगह में ना जाए। इस तरह से यदि हम इन बातन को अपने अमल में लिया है तो अपने परिवार को ध्यान रख सकते हैं और गर्मी के दुष्प्रभावन से भी बच सकते हैं। और अब मिलते हैं अंतराल के बाद।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: बहनों, बातें तो अपन से बहुत हो गई, अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाऊ तो है। सुनत है जब वार्ता, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार की स्थापना। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हेमराज द्विवेदी।
5: पंचो आज अपने स्टूडियो में आए हैं श्री राम रेकवार जी जो मछली पालन करत हैं। तो रेकवार जी राम राम।
6: राम राम सब पंचों को राम राम।
5: रेकवार जी, हम अपन से सबसे पहले तो जो जानबो चाहें कि अपन मछली पालन करत हैं तो मछली पालन कौन तरीका से अपन करत है।
2: बहनों, हमें खेद है कि हम जो वार्ता सुनवा रहे हैं उनका बहुत जरूर सुनवा है लेकिन गलती से वो दूसरी वार्ता बच गई है। तो हम अपन का बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पे जो अपने पास उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से स्वरोजगार की स्थापना कैसी करी जा सकते है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हेमराज द्विवेदी वार्ता के माध्यम से। तो सुने।
7: ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप सभी किसान भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे जो छोटे छोटे रोजगार हैं जो ग्रामीण स्तर पर आसानी से आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो मेन समस्या है हमारे किसान भाइयों की जो आय है वो निरंतर घटती जा रही, कृषि में लागत बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में जब किसान अपने द्वारा उत्पादित अनाजों का MSP पर ही विक्रय पर मजबूर है, ऐसी दशा में यदि हमारे किसान भाई छोटे छोटे रोजगार गांव में ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थापित करते हैं तो निसंदेह यह आपके

लिए एक लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें जिस प्रकार से आप जैसे अभी जो सीजन चल रहा है गर्मी का चल रहा है, इसमें आपके पास जो हमारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें आम, आम के साथ साथ बेल बहुतायत मात्रा में, यदि आप चाहें तो बेल का मुरब्बा, बेल का अचार और बेल का भी आप पाउडर बना सकते हैं। जो पाउडर है वो आपको लंबे समय तक आप उसको संरक्षित करके रख सकते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी है। इसको यदि आप डिहाइड्रेटेड करते हैं, गांव में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे आप लोग पहले चने की भाजी का सुस्का तैयार करते थे, ऐसी स्थिति में जब आप उसको तैयार करेंगे, आम का अचार है, बहुत सारे आजकल शहरी महिलाएं जितनी भी हैं वो घर में अचार नहीं बनाना चाहती, ऐसी दशा में यदि इस सीजन में उपलब्ध आम का, कैरी का, आप आम का अचार के रूप में परिवर्तित करते हैं और उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग, उसके लिए सरकार NRLM के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह बनाती है, ऐसी स्थिति में अपने घर की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ करके उनकी आय में वृद्धि के लिए ऐसे छोटे छोटे रोजगारों को स्थापित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि हमारा ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है अभी बीड़ी पत्ती की तुड़ाई चल रही है, ऐसी दशा में इसके बाद जैसे ही आपको जंगल में बहुत सारी चीजें, आंवला है, अर्रा है, बहेड़ा है, इनसे बनने वाले उत्पादों की गांव में कैसे हम यूनिट्स लगा सकते हैं, गांव में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें शासन फंडिंग करती है, 35% अनुदान PMFME स्कीम है, 35% अनुदान है उसमें, ऐसी दशा में आप चाहें तो ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। किसान भाइयों, आपके लिए चूंकि जब आप स्वयं के उत्पाद बनाएंगे, आपके पास जो भी उत्पाद है, जैसे गेहूं है, गेहूं का आप दलिया बना सकते हैं, गेहूं का आटा बना सकते हैं और गेहूं का और आटे से बिस्किट बना सकते हैं। जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोसेसिंग करते हैं, ऐसी दशा में हमारे किसान भाई अपने द्वारा उत्पादित अनाज का स्वयं मूल्य वर्धन करके और उसका मूल्य निर्धारण भी कर सकते हैं, तब जाकर के हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मोहन जी, उनका जो सपना है उसको हम साकार करेंगे इस दिशा में कि हमारे गांव में कौन सी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कैथा है, बेल है, बेर है, बेर को भी आप सुखा करके उसका पाउडर बना करके, उसकी टॉफी बना करके, उसकी कैंडी बना करके बहुतायत मात्रा में संजोया जा सकता है। अभी जामुन का सीजन आने वाला है, जामुन के सीजन में आप चाहेंगे तो जामुन का जूस बना सकते हैं, चूंकि जामुन एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है। क्योंकि आज हमारे किसान भाइयों की एक एक ओर अगर हम देखें तो मेन समस्या है कि उनकी आय और दूसरी ओर समस्या है बच्चों का स्वास्थ्य। दिन ब दिन हमारे परिवार की आने वाली समस्याओं में स्वास्थ्य प्रमुख, ऐसी दशा में यदि हम स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, उसके लिए हमें अपना जो हमारा खान पान है और उस खान पान को हमें बहुत ही संतुलित करने की आवश्यकता है। इस दशा में जब आप संतुलित खान पान की बात करेंगे तो वहां पर जो हमारे श्री अन्न है, श्री अन्न का मतलब वही कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, सावा, ये वही चीजें हैं जो आज से कुछ दिनों पहले, आज से कुछ वर्षों पहले हमारे किसान भाई निरंतर इसका उपयोग करते थे, ऐसी दशा में यदि हम उसको पुनः अपने दाल और चावल के साथ साथ धीरे धीरे गेहूं की जगह में जौ और उसकी जगह में ज्वार, बाजरा, इनको धीरे धीरे सम्मिलित करेंगे मोटे अनाजों के रूप में, तो निस्संदेह हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और एक ग्रामीण स्तर पर रोजगार के लिए सबसे अच्छा साधन है मुनगा की पत्ती। जैसे आप चने की भाजी को सुखाते थे, वैसे ही आप मुनगे की पत्ती को सुखा सकते हैं। आप मुनगे के साथ साथ सहतूत की पत्तियों पर भी काम कर सकते हैं, ऐसी दशा में जो हीमोग्लोबिन लेवल है हमारी माताओं बहनों में, जो एनीमिया एक बीमारी है, खून की कमी रहती है, ऐसी दशा में वो लोग चाहें तो इन पत्तियों का सेवन करके अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और उससे जो हमारा स्वरोजगार है और उसको बेच करके भी आप पाउडर बनाइए और पाउडर बना करके उसको यूज कैसे करना है, उसको हम अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, उसको रोटी और पराठा में डाल सकते हैं, पूड़ी में डाल सकते हैं और उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ग्रामीण स्तर पर आप मशरूम का उत्पादन भी कर सकते हैं, मशरूम भी
जो लोग मान

मांस मदिरा नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन के लिए अच्छा साधन है हमारा मशरूम। मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसका अचार बना सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं और ये निसंदेह प्रोटीन पाउडर के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग ही नहीं, आप इसको अपने गांव में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, और अगर आपने NRLM के माध्यम से स्व सहायता समूह गठित कर लिया है तो स्व सहायता समूह के माध्यम से आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं और शासन उसमें आपका सहयोग करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज की जो हमारी जरूरत है, चूंकि समय अभाव के कारण आजकल रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट की बात होती है, और जब आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो धीरे धीरे पहले की महिलाएं हमारे घरों में नमकीन स्वयं बनाती थी, आज हर चीज बाजार से आ रही। तो क्या आप बाजार में लोगों की जरूरत के आधार पर, ग्रामीण जरूरत के आधार पर, क्या आप उनके लिए अनाज उत्पादन नहीं कर सकते? आप उनके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं तैयार कर सकते? कर सकते। इसके लिए हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों में इसके प्रशिक्षण होते हैं, आप वहां से प्रशिक्षण लीजिए। वहां पर आवासीय प्रशिक्षण भी होते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र सदैव ऐसे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के लिए बहुत सारे आयाम अपनाता है। सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, मेहंदी है, और इसके साथ साथ अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है, ये सारे आयाम हम अपना करके अपने गांव में रोजगार की स्थापना कर सकते हैं। और जब हम अपना रोजगार लगा लेते हैं तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ जो आय है हम उसका सीधे डबल से ट्रिपल मात्रा में हम उसका मूल्यवर्धन कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपका गेहूं अभी 2,200-2,300-2,400-2,400 रुपए में जा रहा है, लेकिन जब आप बाजार में अच्छी क्वालिटी का आटा खरीदने जाते हैं तो लगभग 45-50 रुपए, जस्ट डबल। और आपको आपने उसमें कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ थोड़ा सा ग्रेडिंग कर ली, क्लीनिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, और उसके बाद आपने आटा पीस लिया और सीधे 45-50 रुपए का हो गया। किसान ऐसी दशा में कई बार घाटा खाता है। किसान यहाँ पर अपने गेहूं को 25 रुपए में बेचता है और जब उसका बेटा इंदौर, भोपाल या अन्य जगहों पर पढ़ने जाता है तो वहीं पर वो 50 रुपए किलो का आटा खरीद करके खाता है। तो ऐसी दशा में हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि गांव में कैसे हम उसको कलेक्ट करें और गांव के गांव में कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी यूनिट को लगा करके। उद्यान विभाग के द्वारा PMFME एक स्कीम है जो चलाई जा रही है, उस स्कीम के माध्यम से हम चाहें तो इस रोजगार को सृजन कर सकते हैं। इसमें लगभग 35% अनुदान है और 10 लाख तक में आपको लगभग 7 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए सरकार आपको देती है। तो ऐसी दशा में यदि आप उसको कराते हैं तो बहुत ही आसानी से आप रोजगार की स्थापना कर सकते हैं। चिप्स बनाना है, क्योंकि आज की जो हमारी डिमांड है चिप्स, और सबसे बड़ी बात चिप्स, पापड़, ये सब हाइजीन, कोई भी हमारा भोज्य पदार्थ हो, वो जब तक स्वस्थ नहीं होगा, जब तक स्वच्छ नहीं होगा, जब तक संतुलित नहीं होगा, उससे हमारे शरीर को पौष्टिकता नहीं मिलेगी। हमारा आज की जो सबसे बड़ी डिमांड है, और मेरी किसान भाइयों से और माताओं बहनों से अपील है कि घर में पोषण वाटिका जरूर लगाएं। पोषण वाटिका से क्या होगा, एक तो आपके परिवार को वर्ष भर संतुलित सब्जियां मिलेंगी, हरी सब्जियां मिलेंगी, और उसके लिए बहुत अलग से, हमारे क्षेत्र में पानी की कमी, लेकिन हम दैनिक जीवन में पानी का उपयोग तो करते हैं, स्नान करते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, और उसके बाद जो हमारे घर का जो बेस्ट पानी है, जो हमारे यहाँ उपयोग नहाने का पानी है या शौच क्रिया का पानी है जो बाहर निकलता है, उस जगहों पर पहले भी हम लोग बाड़े में लगाते थे सब्जियां। तो ऐसा हमें रूटीन बनाना चाहिए खरीफ, रबी और जायद के आधार पर कि हमारे पास 7 दिन के लिए 7 प्रकार की सब्जी का उत्पादन वहां पर हो जाए। और वो सिर्फ सब्जी हमारे दैनिक जीवन के आहार के लिए ही नहीं होगी, किंतु हमारे दैनिक जीवन के अलावा यदि हम चाहेंगे तो हम अपने पड़ोस में उसकी सब्जी बेच भी सकते हैं। और उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। हमारे घरों में यदि हम गौपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो गौमूत्र है, गोबर है, गोबर की खाद है, इनका उपयोग करें।
वर्मी कंपोस्ट

0: का प्रयोग करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो खाद्य की समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसी दशा में यदि हमें अपने स्वास्थ्य को चाहिए और अपने परिवार की आय को चाहिए तो हमें आवश्यक रूप से बर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद और बीजामृत, जीवामृत, घनामृत ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए। वाकई में ये हमारी आय को भी बढ़ाएंगे, और यदि ऐसी गौशालाएं गांव में होती हैं जिनमें दुधारू गायें नहीं हो, या आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप लोग कुछ मत करिए, गांव में ही गोबर कलेक्ट करवाइए। आसानी से जब आप उनको 50 पैसे या 1 रुपए किलो के हिसाब से गोबर का रेट देंगे तो आसानी से लोग आपको गोबर दे देंगे। जब आपको गोबर मिल जाए तो उसको छायादार स्थान में केचुए की खाद बनाने का काम करिए, और केचुए की खाद बनाने का काम जब आप करेंगे तो उस दशा में आप उसको बेच सकते हैं, और उसको पूरी तरह से आप उसको तैयार करके मार्केट में 10 से 12 रुपए 15 रुपए किलो आसानी से बेच सकते हैं। इस दशा में आप आसानी से एक अच्छी आमदनी, जो आपने 1 रुपए का किया है, गोबर खरीदा है, वो कम से कम 12 रुपए जाएगा, और 60 दिन में केचुए के माध्यम से केचुए की खाद को तैयार कर देगा। उसको आप पैक करके जो गमलों में खेती करते हैं, जो रूफ हार्वेस्टिंग करते हैं, जो छतों में खेती करते हैं, या ऐसे फार्म बहुत सारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो किसान आपसे खरीदेंगे और आप गांव में ही उत्पादन जम करेंगे तो गांव से ही लोग आपको ले जाएंगे।
1: मैंने अब पुण्य सुनी जो वार्ता, ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार की स्थापना। वार्ताकार हते डॉक्टर हेमराज द्विवेदी, और अब मिलत है अंतराल के बाद।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: और बहनों, अब बारी है लोकमंजरी कार्यक्रम की, जिनके माध्यम से अपन अपने पत्र और ईमेल पे आधारित फरमाइश हम तक भेजत हो, और अब तो आकाशवाणी के फेसबुक पेज पे भी अपन फरमाइश भेज रहे हो। तो शुरू करत हैं आज को लोकमंजरी कार्यक्रम। लोकमंजरी कार्यक्रम को पहलो लोकगीत है आजाद रावत के स्वर में एक दादरा, जीखा सुनबो चाहो है ग्राम डिलारी से जगत सिंह, शौर्य प्रताप सिंह, गोरी राजा, हरदेव सिंह, मीरा सिंह, धर्मेंद्र सिंह, छोटू सिंह, भगवत सिंह और राम सिंह। लिधौरा से देवेंद्र सिंह, सुनीता सिंह, समरजीत सिंह, चंद्रविजय सिंह और जया राजे। हनुमान टोरिया के पीछे छतरपुर से रमेश सेन, रामबाई, राजीव, मनोहर, ज्योति, पूजा सेन, अंशु और डुग्गू सेन। छतरपुर से माधुरी सिंह और प्रद्युम्न सिंह। ग्राम तेवरता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जया मरकाम, सहोद्रीबाई मरकाम, ममता, मनीषा, मंजू और गिरजाबाई मरकाम। सत साहेब रेडियो श्रोता संघ ग्राम ननोरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका और उपमा। ग्राम रजौनी जिला महोबा से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, नीतू, दिव्यांश और उनके परिवार वाले। छिमनी पहाड़ गांव थाना ईसानगर जिला छतरपुर से बालचंद कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, गोले, भागवती कुशवाहा, कुमारी आकृति कुशवाहा और हनुमत कुशवाहा। भद्रकाली माता के पास कपूरथला पंजाब से पंचम कुशवाहा, सपना कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, नीतू कुशवाहा और कमलेश कुशवाहा। इसके अलावा आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पे जो फरमाइश मिली है, वह सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। छोटी बाजार गणेश चौक छिंदवाड़ा से माही दुबे, पलक, सतीश, लाला और राजेंद्र दुबे। ग्राम पोस्ट बिरखरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु और हिमांशु। तो अपन सब अपनी पसंद पे सुनो आजाद रावत के स्वर में जो दादरा।

अगले लोकगीत कला ने हमारे पास चिट्ठियां लिख पहुंचाई हैं सागर से। अनुपमा, अनूप, मेघना, अनुराग, सुखदा, अमृषा, अनुज, आयुष, अविक और समस्त परिवार। राम मंदिर दमोह से निर्मला सोनवलकर, पद्माकर, माणिक, प्रवीण, कीर्ति, प्रकाश, शुभांगी, वैभव, राधिका, गौरव, प्रियंका, अबीर, कौस्तुभ, कौशिकी और समस्त परिवार। गंज बासोदा से अमृता देव, अरुण, आकांक्षा और अक्षय। बिलासपुर से हेमंत, मंजरी, नितिन, जागृति और आर्या। भोपाल से शिशिर, माधुरी, डॉ अर्चित और अमे। छतरपुर से श्रीधर, श्रुति, सारांश, युक्ति और युग। कटनी से जयश्री और संजय पाठक और उनके छोटू कान्हा। मॉडल बेसिक स्कूल ग्रुप से मंजू शुक्ला, मंजू सिंह, नीना राठी, कामिनी, नीलमा खरे, किरण निगम, निधि खरे, विदुषी गुप्ता, मधु कौशल, मीना खरे और सकिया। विदिशा से नवीन, नीलमा, नव्या, अनंत और

अक्षत, ललितपुर से राशि, प्रिया, स्कंद और चुन्नी मुन्नी, देरी रोड छतरपुर से दिनेश कुमार मिश्रा, अंजू मिश्रा, मुनमुन और वैशाली, छतरपुर से रचना सिंह, सुनीता खरे, रामेश्वरी अवस्थी, नम्रता द्विवेदी, सबा अख्तर, अलीजा, एजलिन और उनके परिवार वाले, ग्राम दुर्गा पोस्ट बडेर, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी से मानसिंह आदिवासी, वैष्णवी, मोहिनी, सरस्वती, गोदावरी, भूरी, भवान्य, पुष्पा, महक, राहुल कुमार, राम कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुनीता, हरविलास आदिवासी और समस्त आदिवासी परिवार। फेसबुक पेज पे ये फरमाइश भेजी है, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से बाबू यादव, मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव। तो अपन सब सुनो अपनी पसंद पे, उर्मिला पांडे को गाओ जो रसिया।

अगले लोकगीत के लाने हमारे पास चिट्ठियां लिख पहुंचाई हैं। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। ग्राम भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, सुभाष कपूर और ओम प्रकाश। ग्राम दंतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। और ये फेसबुक पेज पे जे फरमाइश आई है, घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार और चंद्रकांता रेवाड़। मौतेला महाराष्ट्र से विजय और रतनमाला सुरल करके। अपुन सबने सुन चाहो है सोनी कक्कड़ और साथियन के स्वर में जो दादरा, तो सुने।

और अब बारी है आज की सीख की। आज की सीख में जौन पातर में खात ओई में छेद करत। जब बुंदेलखंड की एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध मुहावरा है, इको सामान्य अर्थ जी थाली में खाना ओई में छेद करवो है। जा कहावत ऐसे लोगन के लाने उपयोग करी जाते है जौन अपने मददगार या जौन व्यक्ति से फायदा मिल रहो है वही खा धोखो देत या नुकसान पहुंचाउत है। और अब है कल के कार्यक्रम की बारी। कल हुई धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 11 वार्ता ग्रीष्मकालीन तिली की फसल में लगने वाले कीट और रोग का प्रबंध डॉक्टर शोभाराम ठाकुर से। सीख में जंगल में मोर नाचो कौन ने देखो। और एक संगे अपनी बहन उर्मिला का अनुमति दो। बहनों राम राम।

0: ग्रामीण बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8 बजने को है। भोपाल से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास। कृपया इंतजार करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ

0: सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एमपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स

0: रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिरी सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर एक चीज हमने और भी देखा कि जो पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप

0: ने किया और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो पीएलआई स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी। और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
0: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हैं और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स हैं। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरीके की
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि

0: जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड है, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है।

0: नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूं कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे,
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितने

0: ना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं। लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
0: वो तो

0: का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेंजी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे। राहुल गांधी जेंजी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेंजी से मिल रहे हैं, सब जेंजी से मिल रहे हैं।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहां दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि

0: देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म यादों की बारात में। मजरू के गीत को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म हम किसी से कम नहीं से।

0: आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी व साथियों की, गीत मजरू का, संगीत एक बार फिर आर राहुल देवबर्मन का, बस एक छोटे अंतराल के बाद।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8:45 होने को है। समाचार संध्या का अनुप्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, कृपया इंतजार करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई

0: रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर

0: की संकल्पना ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।

0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir.

0: 만탄.
1: 예, 아카시바니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा

0: आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
1: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं, और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेग्नेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहने हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं, तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं इन सभी को, जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
0: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
1: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और TD वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना, उनको न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
0: बिल्कुल, तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
1: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं, वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
0: बिल्कुल,
1: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
0: बिल्कुल, एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
1: पहले हम लोग जो

0: ये कार्यक्रम चलता रहा है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग ने सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त मतलब 5th ANC
1: बिल्कुल
0: 5वां अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके
1: जी
0: लॉन्च
1: जी
0: किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा तो
1: जी
0: 5 हुआ, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा। हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई। इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो।
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
1: जी
0: उसमें 130 था, और आज वो 2022-24 का अभी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते
1: जी,
0: हैं,
1: जी
0: उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांवों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं।
0: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो
1: जी
0: वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है
1: जी।
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत

0: भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें
1: जी
0: हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक-एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे
1: जी
0: मनता है,
1: जी
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के ऊपर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे कुमार सानू को फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में। जावेद अख्तर के गीत को संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म यह है मुंबई मेरी जान से। आवाज एक बार फिर कुमार सानू की है, संगीत जतिन ललित का, गीत इंदीवर का। इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह है। मालिहान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका, हरदेव, बलविंदर विर्क। शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा।

हनुमान गढ़ राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और उनके परिवार वाले। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म ये है मुंबई मेरी जान का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को, फिल्म ये है मुंबई मेरी जान में। इन धीवर के गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आइए आप सुनते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में कुमार सानू और अलका याग्निक को। राहत इंदौरी के शब्दों को संगीत दिया है बिजू शाह में। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। ग्राम बापोस बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। ग्राम अपोस्ट कुशमार धना सौजना तहसील मेहरोनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल, चाहना नामदेव, आकाश रानीपुरी, सूरबी, पायल और उनके मम्मी पापा। स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिर्तला जिला महोबा यूपी से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, देविका, देवांश कुमार भास्कर और बेबी आरोही। ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव, शीला नामदेव, रोशनी नामदेव। रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में। राहत इंदौरी के गीत को संगीत दिया था बीजू शाह ने।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म संघर्ष से। समीर का गीत, जतिन अल का संगीत और आवाज सोनू निगम की। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। अम्भई सिल्लौर जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोड़के। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हिरामण सेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। बुल्ढाणा महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। यहीं से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेत कुमार। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और उनके परिवार वाले। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म संघर्ष का ये गीत।

संघर्ष इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे सोनू निगम को, समीर के गीत को संगीत दिया था जतन ललित ने। कार्यक्रम की अग्रणी प्रस्तुति फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। शब्द रचना महबूब की है, संगीत इस्माइल दरबार का, आवाज के डोमिनिक और साथियों की। इस गीत को पसंद किया है आप सबने। ग्राम भदौरा गुड़ा तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्रजकिशोर सुखवती अमित हेमलता शिवम नामदेव और उनके मम्मी पापा। गुमला झारखंड से एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। बुल्ढाना बड़सिंगी महाराज से अमोल मानकर शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार। कलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरिंदर संधु अनिता संधु रोहित संधु रितेश शिखा प्रतिशा संधु और मैक्स। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर और कुमार गारो मंदूरकर। आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे के डोमिनिक और साथियों को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में। महबूब के गीत को संगीत दिया था इस्माइल दरबार ने। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण को फिल्म दिल से में। गुलजार के गीत को संगीत दिया है एआर रहमान ने और पसंद किया है आप सबने। ग्राम ममना जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, शाहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदन, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा। गांव हीरा वाली फालजिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांश गोदारा। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। गांव नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शाबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल से का ये गीत।

दिल से। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे उदित नारायण को, गुलजार के गीत को संगीत दिया था ए आर रहमान ने। आइए आप सुनते हैं फिल्म यस बॉस में अभिजीत को, जावेद अख्तर का गीत और संगीत जतिन ललित का। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। अलगीडांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से ज्योदित यादव, विपिन, आयुष, अतल और श्रीमती फूलजी यादव। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाघ, पंजाब राव जावरकर और संदीप पाटिल। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से बसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ग्राम भुरसोदा से संतोषी, ज्योति, गजेंद्र, चंद्र प्रकाश और समसेन परिवार। मुरखम माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मनु पटेल। इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म यस बॉस का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को फिल्म यस बॉस में जावेद अख्तर के गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुखविंदर को फिल्म ताल में, आनंद बख्शी का गीत, एआर रहमान का संगीत। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। बखतपुरा पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रामाधीन प्रजापति, श्रीमद लच्छी, वर्षा, मन खुशी, सुमित, अमित और बाबूलाल प्रजापति। सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस, नूर मोहम्मद, कासिम हासिम और इरफान मीना। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश। इंदिरानगर उरई जिला जालौन से वंदना त्रिपाठी। ग्राम कनाए और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्यप्रकाश अहिरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, रामहित, ओम प्रकाश, ज्योति, राजकुमारी, बबली देवी, किरण, अर्चना और उनके परिवार वाले। मोर टक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल। आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म ताल का ये गीत।

Hey, hey, hey, hey.

अलका याग्निक, सुखविंदर व साथियों के गाए फिल्म ताल के इस गीत के साथ ही मन भवन का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा।

0: है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of